आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जीवन में प्रेम, सुंदरता और मधुर भावनाओं का संदेश देता है फूल और पुष्प। फूल अपने रंगों और खुशबू से वातावरण को खूबसूरत और सुंदर बना देते हैं, वैसे ही प्रेम और अपनापन भी जीवन को खुशियों से भर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जीवन में स्नेह, सरलता और सकारात्मकता बनाए रखने से हर दिन और हर मन सुंदर बन सकता है।

मेरा मन तेरा प्यासा, ये गीत हम आप सुनेंगे। ये गीत प्रेम और अपनत्व की गहरी भावना को व्यक्त करता है। ये गीत मन की उस चाहत को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने प्रिय के स्नेह के साथ की कामना करता है। प्रेम जीवन को मधुर बनाता है, रिश्तों में विश्वास और अपनापन भरता है। ये प्रेम ही है जो हमें ये सिखाता है कि सच्चा स्नेह जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना देता है, और यकीनन दुनिया प्रेम पर ही टिकी हुई है। तो चलिए सुनते हैं रफी साहब की आवाज़ में ये गीत।

जीवन और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। जीवन में हमें आगे बढ़ने, सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है, जबकि प्रेम जीवन में मिठास, अपनापन और खुशी भरता है। प्रेम देखा जाए तो दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि परिवार, मित्रों और समाज के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना भी व्यक्त करता है। प्रेम से जीवन में विश्वास, सहारा और सकारात्मकता आती है। जिस जीवन में प्रेम होता है वो अत्यधिक सुंदर, अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। इसी प्रेम और सद्भाव के साथ जीना ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। और हम आप भी तो प्रेम की इसी डोर से बंधे हुए हैं, तो इसी के साथ भोर सुहानी का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों

0: की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulos, in New Delhi today. Mr. Christodoulos arrived in New Delhi yesterday from Mumbai. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. The President of Cyprus is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vaftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulos to India in his current capacity. The first International Big Cat Alliance Summit, which was scheduled to take place in New Delhi on 1st of June, has been postponed. It was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 మెగాహెర్ట్స్ పై. నేను మీ

ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9.

ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9. ಡಾಂಗು ಡಾಂಗು ಡಾಂಗು ಡಾಂಗು ಡಾಂಗು ಡಾಂಗು.

FM Rainbow 101.9.

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9

कि पूरा दिन बस इसी एक्साइटमेंट निकल जाता है कि वीकेंड तो पास आ गया, बस एक और दिन। तो चलिए आज के इस फ्राइडे को थोड़ा और लाइट, फन और एंजॉयबल बनाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और रिलेटेबल बातों के साथ। स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9 विद मी योर आरजे लहरी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

Well, we are back. Hello, listeners. You're listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri. So, we were talking about biological diversity or biodiversity. Now, don't be like, oh, what is this now? It's all, ये जो टोली चौकी टू आइकिया कनेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी का फ्लाईओवर के बारे में बात करें क्या? आई नो नो नो नो नो नॉट अबाउट दैट. समथिंग फ्रॉम द साइंस टेक्स्ट बुक, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द टेक्स्ट बुक वे, बट इन अ वे वेयर वी कैन अंडरस्टैंड वॉट लाइफ इज एंड हाउ मच नेचर इज इम्पॉर्टेंट टू अस. यस, नेचर एंड ह्यूमन्स आर नॉट डिफरेंट डिफरेंट. दे टुगेदर मेक बायोडाइवर्सिटी. So, stay tuned to FM Rainbow 101.9. We'll talk more about how biodiversity, nature are being a part of our day-to-day life after this song.

You're listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri. So, dosto, have you ever imagined, have you ever actually realized that most of us use nature in order to express emotions or feelings towards our loved ones? Have you observed this? या यू नो बड़ी फिल्मी लाइन्स मारते रहते हैं टू इम्प्रेस योर गर्ल फ्रेंड और यू नो एनी वन हूएवर यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग टू लाइक यू नो तुम्हारी आँखों में समंदर की गहराइया है टू मच फिल्मी एंड चीज़ राइट यस बट नेचर इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग दैट वी आर अनेबल टू कम यूज इट एवरीवेयर यू नो let it be expressing or in order to teach something to someone. We just take examples of oceans, birds and trees, etc., etc. Everything which involves nature. I even have few more lines like where you can use today to, you know, tarif your favorite person. Like, uski hasi barish ki pehli boon jaisi hai. Yeah, just observe your loved one's smile today and randomly just go tell them this filmy line. It might bring a bright smile on their face. Chalo, let us listen to another beautiful song.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

A wonderful morning, my dear listeners. You are tuned into Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9. We have just stepped into the magical musical journey of Namaste, Hello, Adab, and this is Ajay Rani Sriram with you on this lovely morning. Well, hope you guys all had your morning shot of coffee. Haan, maine to apni coffee with extra foam dil bhar ke enjoy ki thi. और मुझे लग रहा है आप में से कई लोग इस वक्त अपनी बालकनी में बैठकर कॉफ़ी की एक एक चुस्की एंजॉय कर रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे इंदिरा पार्क की वॉकर्स बैच में बाजू वाली स्टॉल पर थोड़ी गपशप करते करते गर्म चाय कॉफ़ी का मज़ा ले रहे होंगे। शायद इसलिए तो हम सब का मॉर्निंग मूड इतना पावर पैक्ड नज़र आ रहा है। वैसे कॉफ़ी की चुस्की घर की बालकनी में ले या फिर गली के कोने वाले स्टॉल पर, मज़ा तो बिल्कुल ज़बरदस्त आता है। सो एंजॉय एंजॉय। मीनवाइल हियर यू गो विद ए वंडरफुल ट्रैक।

Hello, welcome back. For those who have just tuned in, a very good morning. We all were enjoying the aroma of morning coffee with a double foam, loaded with a double energy. वैसे एक बात बताइए दोस्तों, कभी किसी स्ट्रेंजर के लिए कैफे सोस्पेसो खरीदा है आपने? अब ये कैफे सोस्पेसो क्या होता है रानी श्रीराम? हाँ ज़रा रुकिए, मैं हूँ ना यहाँ बताने के लिए. एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सुना और सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ.

ये बड़ा ही प्यारा सा ट्रेंड शुरू हुआ था इटली से। कैफे सस्पेसो का मतलब होता है सस्पेंडेड कॉफी या पेंडिंग कॉफी। एक्चुअली इट्स ए ब्यूटिफुल सिंपल ट्रेडिशन बिल्ट एंटायरली ऑन ट्रस्ट एंड एनोनिमस काइंडनेस। चलो आपको थोड़ा और सिंपल करके समझाती हूँ। इटली में जब कोई कस्टमर किसी कैफे में जाता है तो वो अपने लिए एक कॉफ़ी तो ऑर्डर करता ही है, पर कभी कभी वंस ए वेल अपनी खुशी से वो दो या उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉफ़ीज़ के लिए पे करके चला जाता है। और वही जो एक्स्ट्रा पेड कॉफ़ी होती है ना, उसी को कहते हैं सस्पेंडेड कॉफ़ी। बाद में कभी भी कोई भी ऐसा पर्सन जो एक गर्म ड्रिंक एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बस काउंटर पर जाकर पूछता है कि क्या कोई सस्पेंडेड आइटम अवेलेबल है। अब जिस कस्टमर ने एक्स्ट्रा पे किया था ना, वो कॉफ़ी इस पर्सन को बिल्कुल फ्री में मिल जाती है, विदाउट एनी जजमेंट और क्वेश्चंस आस्क्ड। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड हार्ट टचिंग कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल, ऐसे ही दिल से दिल तक की बातें होती रहती है यहाँ पर, तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन FM रेनबो 101.9 पर।

0: ರೈನ್ಬೋ 101.9.
1: Hello listeners, seems like the aroma of suspended coffee is about to spread all around in our twin cities too, and honestly I'm loving it. Kindness topped with absolute dignity, right? Aur pata hai ye sirf Europe tak hi limited nahi raha hai, hamare India mein bhi kai cities mein ab suspended chai aur suspended samosa ka trend shuru ho raha hai. सोचिए आपकी एक एक्स्ट्रा कटिंग चाय किसी का पूरा दिन बना सकता है. बहुत ही प्यारा सा जेस्चर है ना इंसानियत का. वैसे अगर हमारे हैदराबाद में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हिट हो जाए तो आप कौन सी चीज़ को सबसे पहले सस्पेंड करना चाहेंगे, गरम गरम ईरानी चाय या दो उस्मानिया बिस्किट्स, बनस का या फिर ठंडा ठंडा फलूदा? इन सब का नाम सुनते ही लग रहा है कि ऐसे कि हम किसी के चेहरे पर कितनी बड़ी स्माइल ला सकते हैं. तो चलो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताइए. वैसे आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पता ही है ना. चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ. 2323-4821 ये नंबर नोट कर लीजिए और हमें मैसेज करके बताइए अगर आपको ये मौका मिले तो आप किस टेस्टी चीज़ को सस्पेंड करना चाहेंगे. विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. तब तक ब्लेंड इन विद दिस लवली सॉन्ग.

0: Hello listeners, you're listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri, and also we have RJ Sriram with us. So today we spoke about, you know, Biodiversity Day, and also Rani Ji ne humko ek, you know, new informative topic ke baare mein baat kiya tha, jo coffee, सस्पेंडेड कॉफ़ी के बारे में. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे. आज और एक दिन है लाइक स्पेशल, दैट इज़ इंटरनेशनल बीइंग यू डे. तो ये सुनने के लिए बहुत सिंपल लगता है, बट एक्चुअली द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग वन कैन एवर फेस. मतलब खुद बनाना, ओरिजिनल रहना, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना आजकल तो बड़ी मुश्किल की काम बन गई है ना. So let us talk about it, like how it actually works, being you and, you know, how this thing is happening. I wanted to ask Rani Ji, like, have you ever felt like, no, this is not me, this is not who I am, I think I'm just trying to impress someone but ending up suffering a lot. Have you ever felt that way?
1: Yeah, of course, aisa hota hi hai. कई बार होता है एक्चुअली ना, कि ज़िंदगी की भागदौड़ और उम्मीदों के बीच हम खुद को बहुत सारे वक्त, कई बार हम खुद को खो जाते हैं और फिर बहुत टाइम लगता है फिर अपने आप को पाने में एक्चुअली. और अब मैं भी उसी फेज में हूँ एक्चुअली इस, और मैं अपने आप को धीरे धीरे अपनी तरफ लौटने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तो मैं हूँ इधर आपके सामने, इधर ही बैठी हूँ.
0: या ओके, देन वील बी टॉकिंग मोर अबाउट हाउ इट इज़, how like being you is difficult, how it has become difficult for each and every one of us nowadays after this wonderful song.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM Rainbow 101.9.
4: Well, we are back. You are listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri and RJ Rani Sriram. So, we have faced the so-called pressure since our childhood. School mein pressure, college mein pressure, job mein pressure, society mein pressure. Or at last, the

call relatives who only visit us when we are on good terms also end up becoming our life coaches without subscription. Beta, why are you so quiet? Why are you so talkative? Why don't you earn more? Why are you working so much? Matlab, no matter what you do, somebody will always have a problem. And because of this, people slowly stop being themselves. एक फनी एग्जाम्पल दो, अगर किसी ग्रुप में सब कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर रहे हैं तो आधा ग्रुप एक्चुअली कॉफ़ी लवर नहीं होता, बस कूल लगने के लिए होता है. एंड इनसाइड, भाई मुझे बूस्ट पीना है, वो ही पसंद है मुझे, है ना. डिडंट वी फेस एटलीस्ट वंस लाइक दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? एवरी वन ऑफ अस हैव गॉन थ्रू इट. So let us talk more about how we faced many situations and how to overcome that and live in reality after this wonderful song. Chalwa, chalwa, chalwa. Yo, blaze up.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। वे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बातचीत के बाद

0: कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। भारत और साइप्रस के बीच घनिष्ठ साझेदारी है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
1: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की। ये सीटें महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद सीवी षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई हैं। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को औषधि नियम की अनुसूची H1 में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय कुछ राज्यों में प्रेगाबालिन के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल के मद्देनजर लिया गया है। ये दवा पुराने दर्द, तंत्रिका संबंधी विकारों और तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित है, परंतु इसकी आदत और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से रखी गई और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि इस वर्ष का विषय है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करें। यह हर किसी के लिए आह्वान है कि वो जैव विविधता को रोकने के नुकसान को रोकने और उसके संरक्षण का प्रयास करे। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजा राममोहन राय को इस अवसर पर श्रद्धांजलि दी है। घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक बढ़कर 75,734 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi is currently holding talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi to further strengthen bilateral cooperation. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora.

wrong for not being ourselves? Yes, the first thing that comes into your mind is comparison. Comparison destroys originality. आपने नोटिस किया, व्हेन वी कंपेयर आर सेल्व्स टू मच, वी यू नो लूज कॉन्फिडेंस, लाइक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और पीस चली जाती है और हम अपनी यूनिकनेस भूल जाते हैं. एक ट्री कभी दूसरे ट्री को देख के नहीं बोलता कि ब्रो तो मैंगो ट्री है, मैं कोकोनट क्यों हूँ. भाई, सबका ग्रोथ अलग होता है. सम पीपल ब्लूम अर्ली, सम पीपल ब्लूम लेट. सम पीपल रन फास्ट, सम पीपल स्टे कंसिस्टेंट, एंड कंसिस्टेंसी इज अंडररेटेड. अग्री आर नॉट? मानो या ना मानो, यू कैन नॉट इम्प्रेस एवरी वन. एंड यस, दैट्स अ फेमस सेइंग आउटसाइड विच इट इज कॉमन बिटवीन यूथ नाउडेज, दैट इज यू कैन नॉट बिकम एवरी वंस कप ऑफ टी. यस, दैट इज 100% ट्रू. यू कैन कीप इम्प्रेसिंग एवरी वन, और यू नो नॉट हाउ मच एवर यू डू और हाउ मच एवर यू ट्राई, यू कैन नेवर बी समवन हु कैन इम्प्रेस समवन हु कैन नेवर बी इम्प्रेस्ड बाई यू. दैट इज अ हार्श ट्रूथ. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9. विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग.

Welcome back, listeners. You're listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri. So we were talking about being yourself, right? So how many of you have decided to be yourself now? Chalo, insecurities to hote rehte hai. You need to come out of it, right? At some point of time. I'll also give you a small relatable movement. Kabhi kabhi hum room mein alone hote hai. म्यूज़िक सुनते हुए सडनली अपने रियल सेल्फ बाहर आते थे. यू नो मोस्ट ऑफ अस टेलर्स लाइक ब्रो आई एम अ बाथरूम सिंगर. यू नो इट डजेंट मीन ही इज़ नॉट कॉलिंग यू टू कम एंड लिसन इन हिज बाथरूम, बट वी कैन बी आर सेल्फ व्हेन नो वन इज़ अराउंड. सो हियर वी कैन आइडेंटिफाई वॉट इज बॉदरिंग अस फ्रॉम बींग आर सेल्फ, राइट? दैट इज पीपल्स जजमेंट एंड फियर ऑफ नॉट बींग impressful, like you can't impress everyone. That is the biggest fear. So don't bother about it and just overcome all those unnecessary insecurities. Be yourself, be unique, and yes, be yourself. Stay tuned to FM Rainbow 101.9. We'll be back after this wonderful song.

FM Rainbow 101.9. हेलो, वेलकम बैक डियर लिसनर्स. पता है दोस्तों, आज जो हमारा आज है ना, कल यही एक खूबसूरत याद बन जाता है और यही यादें हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती भी है. जैसे कि अभी लहरी बता रही थी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे की खासियत से लेकर बीइंग यू तक आज का दिन वाकई बहुत स्पेशल रहा है. एंड ये स्पेशल डे को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए अब एंट्री होने वाली है कुछ बड़े सितारों की. जी हाँ, आज टॉलीवुड और ग्लैमर वर्ल्ड के कुछ बड़े नामों का बर्थडे भी है. वो है मशहूर डायरेक्टर डॉक्टर के राघवेंद्र राव जी, और दूसरी है हम सब की फेवरेट सुपर टैलेंटेड शेफाली शाह जी की. तो बस हम ये सेलिब्रेशंस डबल है, तो लहरिया और मैंने मिलकर आपके लिए एक मस्त म्यूजिकल ट्रीट प्लान किए हैं. एक तरफ होंगे राघवेंद्र राव जी की फिल्म का फेमस जादू और म्यूजिकल जादू, और दूसरी तरफ होंगे शेफाली शाह जी के गानों का, गीतों का फुट टैपिंग बीट्स. तो बस मूड बना लीजिए और एंजॉय कीजिए इस महफिल को ओनली ऑन आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 पर.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

Welcome back, listeners. You're listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri, and we also have RJ Rani Sriram with us. So, our phone in ki waqt hua hai, aur aaj ke topic pretty interesting aur fun, also relatable hai. Wo hai aaj Sherlock Holmes Day. आज का दिन थोड़ा मिस्टीरियस है, लाइक थोड़ा इंटेलिजेंट और थोड़ा डेंजरस. और यू नो, ये दिन शेरलॉक होम्स डे बोल रही है ना, वो सभी डिटेक्टिव्स और यू नो दोज हु आर बिग फैंस ऑफ ओजी लेजेंड दैट इज शेरलॉक होम्स, दे सेलिब्रेट दिस डे एज शेरलॉक होम्स डे. सो आई नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरी वन ऑफ अस हैव बिकम अ डिटेक्टिव. Let it be a small one or a big issue, it doesn't matter, but definitely we have become a detective once at least. So if you also have become a detective in any situation, just share it with us. So call us on 0402323 0030, 0402323 4821, or 0402970 4715. Stay tuned to FM Rainbow 101.9. We'll talk about our Sherlock Holmes Day after this wonderful song.

Welcome back, listeners. You are listening to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri. So we were talking about Sherlock Holmes Day. How many of you have become a detective at least once? You know, I myself feels like a detective whenever it's this case. Like, I bought a new dress and I kept it in my cupboard. The next day morning, I can't find it because obviously my sibling is the one who, you know, took it away. And then I use all my techniques just to prove that it's my sibling who took that dress away from my cupboard. So I think detectives need not be so, you know, famous or popular in order to solve many big cases. Every detective also exists in simple houses, like, you know, small occasions or small situations, whatever it is. अब हॉनेस्टली बोलो, हम सब ने लाइफ में कभी ना कभी डिटेक्टिव बन की एक्टिंग ज़रूरी की है ना? माँ फ्रिज में चॉकलेट छुपाती है, बस हम सीआईडी मोड ऑन, फ्रेंड आई एम आउटसाइड टेक्स्ट करते हैं और हम बालकनी से बाइनोक्यूलर्स लेवल चेकिंग. ये सच में आया क्या? घर के नीचे खड़े हुआ क्या? दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी कीप आस्किंग आवरसेल्व्स. लास्ट सीन हाइड करने वाले लोग भी पकड़ जाते हैं. भाई, हम सब के अंदर एक मिनी शेरलॉक होम्स रहते हैं. ओके, लेट मी आस्क यू, हु शेरलॉक होम्स एक्चुअली इज? हाउ मेनी ऑफ यू नो? आई थिंक एवरी वन माइट हैव हर्ड अबाउट हिम और रेड दैट बुक और वॉच हिज मूवी. क्वाइट पॉपुलर, बट देर आर फ्यू पीपल हु जस्ट नो हिज नेम बट नॉट इन डेप्थ, बिकॉज वी have a habit of, you know, talking about a person without even knowing what they actually are. I mean, who they actually are. So, I'll tell you who Sherlock Holmes actually is. तो जो लोग सोच रहे हैं कि Sherlock Holmes कोई real police officer था, नहीं भाई, वो एक fictional character था. Sherlock Holmes को create किया था famous writer Arthur Conan Doyle ने. फर्स्ट टाइम शर्लॉक होम्स दुनिया के सामने आया एक नावल में कॉल्ड अ स्टडी इन स्कारलेट. उसके बाद लोग लिटरली पागल हो गया इस कैरेक्टर के लिए. इमेजिन करो, उस टाइम ना नेटफ्लिक्स था, ना यूट्यूब, ना रील्स, फिर भी लोग नेक्स्ट शर्लॉक स्टोरी के लिए वेट करते थे जैसे आजकल लोग नेक्स्ट सीजन का वेट करते हैं. तो चलिए, आपका डिटेक्टिव मोमेंट्स भी हमारे साथ शेयर कीजिए. और आपको तो पता है हमारा ही नंबर 0402323 0030, 0402323 4821 और 0402970 4715. Stay tuned to FM Rainbow 101.9 with me, your RJ Lahiri.

इंडियन मॉम्स डोंट नीड एविडेंस, उनको बस वाइब से पता चला जाता है, और स्कूल में टीचर हु थ्रू द चॉक एंटायर क्लास साइलेंस, टीचर फाइन सब खड़े हो जाओ, दैट वन इनोसेंट किड, मैम मैं तो वॉशरूम में था, हाँ टीचर एग्जैक्टली तू ही था, शेरलॉक होम्स भी कन्फ्यूज हो जाएगा कभी कभी इसका डिटेक्टिव स्किल्स देख के, और शेरलॉक होम्स का सुपर पावर था, शेरलॉक का असली टैलेंट क्या था, ऑब्जर्वेशन, वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता था, लाइक शूज डर्टी है पर्सन कहा गया था, वॉच ओल्ड है फैमिली कनेक्शन, हैंडराइटिंग वियर्ड है मूड समझ जाता था, इफ यू अग्री और नॉट इवन वी हैव ग्रेट ऑब्जर्वेशन स्किल्स बट इट वर्क्स ओनली वेन वी आर अराउंड आर सिबलिंग्स और आर बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अ सडन इफ दे स्टार्ट बिहेविंग सो गुड टू अस, लाइक सो गुड विथ अस, वी स्टार्ट डाउटिंग देम, टेल मी द ट्रूथ, वॉट इज दैट यू डिड दैट इज गोइंग टू मेक मी मैड, इजंट इट राइट और रॉन्ग, तो गूगल सर्च, यू नो एवरी पर्सन बिकम्स अ गूगल सर्च, मतलब बंदा गूगल सर्च बिफोर गूगल था, आजकल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंस्टा फॉलोअर्स, ब्लू टिक्स, ऑनलाइन स्टेटस, स्टोरी किसने देखा, क्या कितने लाइक्स आया, यही था हमारा कंसर्न, अगर शेरलॉक आज का ज़माने में होता ना तो हाफ केसेस इंस्टाग्राम कमेंट से ही सॉल्व करवा देते थे, सो लेट अस लिसन टू अनदर ब्यूटिफुल ट्रैक एंड देन विल बी बैक विथ फ्यू मोर रिलेटेबल मोमेंट्स एंड अ बिट ऑफ शेरलॉक होम्स हिस्ट्री, स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9 विथ मी योर आरशे लहरी।

होम्स ऑब्जर्व मोर. आजकल हम सुनते कम है, अज्यूम ज़्यादा करते हैं, और यू नो वी एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीशंस एंड रॉन्ग अजम्पशंस. एंड द सेकेंड वन इज थिंक कामली. हर प्रॉब्लम पे पैनिक नहीं, एनालिसिस इज बेटर देन गेटिंग पैनिक्ड. एंड डिटेल्स मैटर अलॉट. वी नो वी ह्यूमंस हैव अ हैबिट ऑफ जम्पिंग टू कंक्लूजन्स विदाउट नोइंग कंप्लीट डिटेल्स. वी जस्ट अज्यूम वॉट एवर कम्स टू आर माइंड, एंड दैट लीड्स टू मैनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड यू नो हर्टिंग द अदर पर्सन. सो डिटेल्स मैटर. लाइफ की छोटी हैबिट्स ही फ्यूचर बिल्ड करती है, लाइक डिसिप्लिन, लिसनिंग, फोकस. एंड अ गुड सेइंग बाई शरलक, दैट इज यूज योर ब्रेन बिफोर जम्पिंग टू कंक्लूजन्स. और हॉनेस्टली सोशल मीडिया एज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज इट फॉर. नमस्ते. हेलो.

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30:05 हुआ चाहते हैं। अभी वक्त है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का, तो अभी आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: खूबसूरत बज़्म सजाए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हर शाम की तरह आज भी यही उम्मीद रखते हैं कि आज की शाम आपके लिए नारंग के इन खूबसूरत रंगों की तरह सरसब्ज़ और शादाब हो जाएगी, और आपको हिज़ के साथ साथ इन्फॉर्मेशन यानी कि मालूमात भी फराहम करेगी। तो आइए आज की शब के दस्तूर के मुताबिक शुरुआत करते हैं प्रोग्राम्स की क़िरते कलाम पाक से। इससे पहले कि कलाम खुदावंदी से महसूस होया जाए या कि समात से हम बहरामंद हों, मैं आपको आज के प्रोग्राम्स की तफसीलात बताना चाहूँगी। आज के नारंग प्रोग्राम में आप सबसे पहले सुनेंगे खिरत कलाम पाक, जैसे कि अभी मैंने बताया, और फिर उसके बाद हर्फ ताबिंदा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, और फिर डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत एक माहिर डॉक्टर से लिया गया इंटरव्यू जो कि आपकी मालूमात में इजाफे का बास बनेगा, आपके गोशगुजार किया जाएगा, और फिर हर शब की तरह सुरीले गीतों से सजा प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा आपको सुनाया जाएगा। फिर उसके बाद शब प्रोग्राम का अख्तिताम पयाम शब से होगा, यानी कि शब का पैगाम। इस तरह से हमने हमारे आज के नैरंग के प्रोग्राम को तरतीब दिया है। तो आइए सबसे पहले पेशकश है क़िरते कलाम पाक की, मुलाहजा करें।
1: الشيطان

0: माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप समात कर रहे थे क़िरअते कलाम पाक। अल्लाह ताला के इस बाबरकत कलाम के बाद आइए प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। खिदमत में आपकी पेश करते हैं हर्फ़ ताबिंदा। हर्फ़ ताबिंदा की आज की तहरीर और पेशकश है मोहतरमा आयशा बुतूल की। लीजिए समाप्त करें हर्फ ताबिंदा।
1: इंसान का पहला तारुफ उसकी ज़ाहरी वज़ाख़ता से और दूसरा तारुफ उसकी ज़बान से होता है। ज़ाहरी वज़ाख़ता का तारुफ ज़्यादा देर पा नहीं होता, जबकि ज़बान और अख़लाक का तारुफ हमारी असल पहचान बनता है। किसी के ज़ाहिर को देखकर हम उसके बारे में हतमी राय कायम नहीं कर सकते कि वो कैसा इंसान है। उस वक्त तक हम उसे नहीं समझ सकते जब तक वो बातचीत से अपनी पहचान खुद न करवा दे। इंसान की शख्सियत उसकी बातचीत की सलाहियत में ही पोशीदा होती है। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो ज़ाहरी तौर पर बहुत मुतासिर कुन शख्सियत के हामिल होते हैं। उनका पहनना, ओढ़ना, उठना बैठना, चलना, बोलना, कस सब कुछ उन्हें एक बावेखार शख्सियत के तौर पर जाहिर कर रहा होता है। लेकिन जब वो ज़बान खोलते हैं तो सुनने वालों पर अब तक उनकी ज़ाहरी शख्सियत का जो सहर छाया होता है वो यकदम गायब हो जाता है। इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर लोगों में कोई ख़ास तासुर क़ायम करने में नाकाम रहते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनका अंदाज़े गुफ्तगू दूसरों को अपना गर्विदा बना लेता है। ज़ाहरी तारुफ ज़्यादा से ज़्यादा चंद लम्हों पर मुहित होता है, जबकि अख़लाक़ी तारुफ हमेशा के लिए मजमू पहचान बन जाता है और लोगों की हमारे बारे में राय का हतमी तायुन करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम ज़ाहरी व आर्जी तारुफ से ज़्यादा अपने दायमी तारुफ पर तवज्जो दें। अपनी जिस्मानी वज़ाख़ता को पुरवखार और मुतासिर कुन बनाने से ज़्यादा इस बात पर ध्यान दें कि हमारा अंदाज़ गुफ्तगू कैसा है, हम दूसरों से बात करते वक्त कैसी ज़बान और किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ये भी गौर करें कि कहीं हमारे अल्फाज किसी की तोहिन तो नहीं कर रहे, कहीं हमारे अल्फाज किसी की शख्सियत को मसख करने का सबब तो नहीं बन रहे। ये भी गौर करें कि कहीं हम खुद को बड़ा साबित करने के चक्कर में छोटे तो नहीं हो रहे।

0: कहीं हम खुद परस्ती के जाम में मुबतला होकर अपने आप को इंसानियत के दर्जे से गिराने का काम तो नहीं कर रहे। याद रहे, अल्फाज बहुत गहरा असर रखते हैं। एक मशहूर मकौला है कि अल्फाज तलवार से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये कौल कोई गलत नहीं है। बेशक अल्फाज के घाव बाज़ औक़ात तलवार से ज़्यादा गहरा जख्म देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि तलवार का घाव नज़र आता है लेकिन अल्फाज का घाव नज़र नहीं आता। कहते हैं वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन सालों गुजरने के बाद भी तलवार का जख्म भरने के बावजूद अपना निशान छोड़ जाता है, वैसे ही अल्फाज के घाव भी हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ जाते हैं। इसीलिए अल्फाज का इंतखाब इंतहाई मोहतात अंदाज में करें। ख्याल रहे कि कहीं गुस्से में कहे गए हमारे अल्फाज किसी की रूह को छलनी करने का सबब ना बन जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के साथ किसी इख्तलाफ के नतीजे में हम तलख कलामी कर बैठते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे अल्फाज सामने वाले की ज़ात की तहखीर कर रहे हैं। कुछ वक्त बाद जब गुस्सा ठंडा होता है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर हम माजरत चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। हम ये भी जवाब पेश करते हैं कि गुस्से में बद कलामी हो गई, पता ही नहीं चला। सामीन, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यही वक्त तो असल में बर्दाश्त से और मसलहत से काम लेने का होता है। और ये भी याद रखने की ज़रूरत होती है कि माजरत करने से सिर्फ आपके अपने दिल का बोझ और एहसास जुर्म कम हो सकता है, लेकिन जिसको आपके अल्फाज ने ठेस पहुँचाई है उसे आपकी माजरत से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये माजरत और नदामत जैसे अल्फाज हम अपने ज़ाती सुकून के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी शीशे के ग्लास को तोड़ने के बाद अगर उससे माजरत की जाए तो क्या वो पहले की तरह जुड़ जाता है? बिल्कुल नहीं। तो याद रखिए कि इंसानी दिल शीशे से ज़्यादा नाजुक होता है। अपने अल्फाज के नश्तर से उसे छलनी करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। आजिज़ी और बुर्दबारी इंसानियत के तकाजे हैं। अशरफुल मखलूक़ात होने का मतलब तकबर में मुब्तला होना हर किस नहीं, बल्कि आजिज़ी के साथ उरूज की मंजिलें तय करना है और इस रफ़त व सरबुलंदी पर हमा वक्त परवरदिगार का शुक्रगुजार भी होना चाहिए। हमारी ज़बान और हमारा अंदाज गुफ्तगु हमारे रवैये का तयन करता है और रवैया किरदार की तश्कील करता है और ये किरदार हमारी तरबियत की पहचान बनता है। वो कहते हैं ना कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। हमारे अंदाज गुफ्तगु से, हमारे रवैये से लोग इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी तरबियत किस तरह के हाथों में हुई है। ये एक मुसलम हकीकत है कि इंसान के किरदार और अखलाक की तामीर पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाती है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा घर के माहौल और अफराद ख़ानदान के रवैयों का होता है। इसलिए बहैसियत अफराद, वालदैन और ज़िम्मेदार शहरी हमें हर लिहाज से अपने अपने घरों में अखलाकी रवैये और अंदाज गुफ्तगु की अहमियत को फरामोश नहीं करना चाहिए। बच्चों को बच्चे समझ कर हमेशा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए बच्चे नहीं रहना होता है, उन्होंने बड़ा भी होना है और इसी माशरे के अंदर रहते हुए अमली ज़िंदगी के तकाजे भी निभाने हैं। आजकल हम देखते हैं कि अखलाक की कोई ख़ास अहमियत नहीं रही। ज़ाहिर को बढ़ चढ़ कर खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। लिबास, जूतों, बैग्स और तरह तरह की चीज़ों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरों के सामने हम कमतर नज़र न आएं। लेकिन जो चीज़ हमारी असल पहचान होती है, यानी हमारा अखलाक, उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते हैं। किसी ने एक सुनाई तो हमें तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक बदले में उसे चार ना सुना ले। आखिर क्यों हम अखलाक जैसी इस इंतहाई ज़रूरी चीज़ को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं? देखा जाए तो हम मजमूई तौर पर अखलाकी बदहाली का शिकार हैं। हमें बहैसियत फ़र्द और बहैसियत कौम संजीदगी से अखलाकियात की अहमियत को समझने की अशद ज़रूरत है। वालदैन, उस्ताद, भाई बहन और ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमें अपने बच्चों, तालिब इल्मों और बहन भाइयों को अखलाक की अहमियत से रोशनास कराना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
1: सामईन, अभी आप समाप्त कर रहे थे हरफ ताबंदा। पेशकश थी आयशा बतूल की। बहुत ही असरअंदाज और मानी खैज इनकी बातें थी। वाकई अखलाक एक

0: ये बेहतरीन शय का नाम है जिसे हम सब अपने किरदार को बना सकते हैं, किरदार साजी कर सकते हैं और हम अपनी शख्सियत को निखार सकते हैं। बहरहाल तालीम होने के बावजूद भी, आला तालीम होने के बावजूद भी अखलाक जो है वो अपना एक मेयार, एक अलग सा रखता है। तो अखलाक का होना इंतहाई ज़रूरी है। हम यही दुआ करते हैं कि हमारे अंदर अखलाक जैसा खूबसूरत जुज़ पैदा हो जाए। चलिए इसी खूबसूरत दुआ के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, वक्त भी आगे बढ़ रहा है। देखिए ना कितनी तेज़ी से आगे निकल चुका है वक्त। स्टूडियोज़ की घड़ी बता रही है कि 9:47 हो चुके हैं। तो आइए अब हम आपके खिदमत में पेश करते हैं डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, हर जुमे की शब सेहत से मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें, ज़रूरी तकारीर या ज़रूरी इंटरव्यू माहिर डॉक्टर से हम आपके खिदमत में पेश करते हैं। तो आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सज्जाद शेख साहब, जो कि हमें बताएंगे कि मौसम गर्मा में एहतियाती तदाबीर क्या हैं गर्मी से बचने के लिए। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दिन के वक्त क्या रात के वक्त भी गर्मी में इजाफा होता ही जा रहा है। तो ऐसे वक्त में किस तरह से हम इस कदर शदीद गर्मी पर काबू पा सकते हैं और क्या एहतियाती तदाबीर हैं जिनके ज़रिए हम कुछ लम्हात के लिए ठंडक महसूस कर सकते हैं या अपने आप को फ्रेश फील कर सकते हैं। तो आइए ये मालूमाती बातें हम समाप्त करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अब्दुल सज्जाद शेख साहब आज के हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे इंटरव्यू ले रही हैं डॉक्टर गौसिया बानो साहिबा। तो लीजिए समाप्त करें ये मालूमाती इंटरव्यू।
1: आदाब अर्ज सामाइन, आकाशवाणी हैदराबाद नए रंग उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ कौसिया बानो और आज नए रंग प्रोग्राम में हम मौसम गर्मा के ताल्लुक से बात करेंगे। मौसम गर्मा शिद्दत पर है और इस शिद्दत में वो क्या चीज़ें हैं जो हमको परेशान कर सकती हैं। तो हम ये सोच रहे थे कई दिनों से कि प्रोग्राम में डॉक्टर साहब को बुलाया जाए और रास तौर पर उनसे गुफ्तगू की जाए और बताया जाए आपको कि मौसम गर्मा में आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और किस तरह आप इस मौसम को इंजॉय कर सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो समय में सबसे पहले बताऊं आपको कि मौसम गर्मा आखिर होता क्यों है। दरअसल मौसम गर्मा होने की वजह यह होती है कि ज़मीन की जो गर्दिश होती है, तो ज़मीन अपने महवर पर 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री पर झुकाव करती है और सूरज के गिर्द उसके बैजवी मदार में गर्दिश की वजह से ये सब कुछ होता है। और सूरज की तरफ जब ज़मीन का झुकाव ज़्यादा होता है तो वहाँ सूरज की जो शुआएं हैं वो बिल्कुल सीधी रास तौर पर पड़ती है और ये ज़्यादा देर तक वहीं कायम रहती है और इसी वजह से इस मौसम के दिन तवील और बड़े हो जाते हैं और इसमें हरारत ज़्यादा हो जाती है, शिद्दत ज़्यादा हो जाती है और हम सब परेशान हो जाते हैं। तो जिस तरह कहा जाता है कि वक्त की गर्दिश होती है, तो इसी तरह ज़मीन की भी गर्दिश होती है और हर मौसम खालिक का बनाया हुआ फितरी मौसम होता है। तो अब इस फितरी मौसम में हमको कई परेशानियां भी लाहक हो सकती हैं और हम इसका जब लुत्फ़ उठाते हैं, हम कभी कभी इंतज़ार भी करते हैं जो दुनिया का सबसे मशहूर मेवा है आम। तो इस मौसम का जो एक मज़ा होता है वो आम में होता है, आइसक्रीम में होता है, कुल्फ़ी में होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम इस्तेमाल करते हैं और बाहर का जो मौसम होता है वो काफ़ी हिद्दत लिए हुए होता है, बहुत ज़्यादा उसमें तपिश होती है, तो उससे कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, कुछ हमारी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के हमारे डॉक्टर साहब से जो हमारे स्टूडियो में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और मैं यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल साजिद शेख साहब से बात करूँगी। डॉक्टर अब्दुल साजिद शेख साहब, मैं आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करती हूँ।
2: जी आदाब अर्ज़।
1: बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, स्टूडियो में आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं, امیر پیٹ میں آپ کا کلینک قائم ہے،

0: और आप अपने एरिया में काफ़ी अच्छी शोहरत रखते हैं। और ये भी मैं बताऊँ आपको डॉक्टर साहब के ताल्लुक़ से कि डॉक्टर साहब कमर्शियल डॉक्टर नहीं हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो डॉक्टर्स है माशाल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद है, लेकिन कुछ जो डॉक्टर हैं जिस तरह इंसान भी होते हैं कुछ अच्छे होते हैं कुछ अपने मुफादात को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो बस इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स बहुत कमर्शलाइज होते हैं, वो पैसों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ऐसे मरीजों को जो बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब बहुत ही हमदर्दाना मशवरों से नवाजते हैं, निहायत हमदर्दी उनके साथ रखते हैं, जबकि आजकल मैं कहूँ कि महंगाई उरूज पर है अपने, तो डॉक्टर साहब की ये कोशिश होती है कि मरीजों को उनका बिल देखकर दिल में दर्द ना हो जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि उन्हें हर तरह से ना सिर्फ उनकी सेहत के ताल्लुक से बेहतरीन मशवरे दे दवाएं दे बल्कि उनको जहनी तौर पर भी बहुत पुरसुकून रखें। तो डॉक्टर साहब मैं दोबारा आपका इस्तकबाल करती हूँ,
1: जी
0: और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मौसम गर्मा में वो कौन सी चीज़ें होती है जो हमको परेशान कर सकती, जैसे कि
1: मौसम
0: लू लगना है,
1: जी,
0: तो ये लू लगना होता क्या है?
1: लू लगना बेसिकली ऐसा है कि ज़्यादा देर तक एक्सपोजर टू धूप, धूप से ज़्यादा देर तक सामने जाकर कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, या आप ऐसा समझ लीजिए कि सडन आप एसी में बैठे और बाहर चले जा रहे
0: ये
1: हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे पास एसी का आजकल तो बहुत
1: हाँ,
0: ज्यादा चलन हो गया है, पहले तो उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता
1: तो
0: था।
1: उस पोजीशन को बोलते हैं लैक ऑफ एक्लेमेटाइजेशन, यानी
0: अच्छा
1: आप 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड में बैठे हैं
0: जी
1: और अचानक 47, 45 में जा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो पहले तो सबसे बेसिक कॉज ये देखना है आपको। और लू की डेफिनेशन तारीफ ऐसी कर सकते हम कि जिस्म का जब कुदरत ने कुदरती निज़ाम में जो टेम्परेचर रखे हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड
0: जी
1: फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब इतना टेम्परेचर अबो द नॉर्मल जाता है, आपका जितना हमेशा रहना चाहिए उससे नॉर्मल जाता है, उससे बढ़ना शुरू हो जाता है, इवन यहाँ तक के 104 तक चला जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहाँ से आप सनस्ट्रोक की डेफिनेशन शुरू कर सकते हैं, उसकी तारीफ शुरू हो जाती है। और जब आपके ब्रेन में एक थैलमस होता है, हाइपोथैलमस,
0: जी
1: हाइपोथैलमस का एंटीरियर पार्ट पोस्टेरियर पार्ट एक गर्मी को मेंटेन करता है, एक कोल्ड को मेंटेन करता है। आपके बॉडी में जितने भी सेंसर्स है, अब धूप पूरी लगातार आपके जिस्म को स्किन को लग रही है, तो वो आपके हाइपोथैलमस से बॉडी का कुदरत ने रखा है निज़ाम कि आपका मेंटेन करके रखना है एट एनी कॉस्ट, आप कोल्ड में जाइए या धूप में जाइए।
0: एक शील्ड है, ये एक
1: शील्ड है
0: तरह की
1: हमारे लिए
0: शील्ड है
1: हाइपोथैलमस, कुदरत
0: जी,
1: ने हमारे लिए एक गार्ड
0: कुदरती
1: रखा
0: ढाल
1: है,
0: है
1: गार्ड
0: ये
1: रखा है,
0: जी,
1: लेकिन हम हमारी गलतियों की वजह से या लैक ऑफ केयरनेस,
0: अवेयरनेस भी
1: अवेयरनेस
0: कह
1: या
0: सकते
1: केयर
0: हैं
1: अपनी
0: हम, केयर
1: लापरवाही
0: भी, हाँ
1: से,
0: लापरवाही भी
1: लापरवाही से हम अचानक चले गए बाहर धूप में, या धूप में ही 4 घंटे 6 घंटे, मजबूरी है, कुछ लेबर्स
0: हाँ
1: रहते हैं,
0: जी, मैं वही कहने
1: मैक्सिमम
0: वाली थी
1: लू
0: जी,
1: लगने में लेबर्स भी आते हैं इसमें,
0: हाँ
1: पेशेंट्स वगैरह,
0: जी
1: तो एहतियात करना चाहिए। अब आप 4-6 घंटे उसमें एक्सपोजर हो रहे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है हाइपोथैलमस, उसको मेंटेन नहीं करने में समझता नहीं, उलझन में आ जाता है, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली धूप में पसीना आता है,
0: जी
1: लेकिन आपको लू लगने में पसीना नहीं आएगा,
0: अच्छा
1: लू लगने में आपको पसीना नहीं आएगा। उसका बेसिक 3 ही सिम्टम्स टिपिकल है,
0: जी
1: 3 सिम्टम्स ऐसे है कि अलामतें,
0: जी जी
1: सिम्टम्स मीन्स
0: हाँ
1: अलामतें ऐसी है कि आपको मतली लगेंगी
0: अच्छा
1: और मुंह बहुत सूखेगा, पानी पानी करेंगे, मुंह सूखेगा, पानी
0: खुश्की
1: कितना भी
0: हो
1: पिए,
0: जाएगी,
1: हाँ
0: हाँ
1: खुश्की होंगी, लेकिन कितना भी पानी पीने के बाद प्यास नहीं
0: सैराब नहीं
1: बुझेगी,
0: होंगे आपकी, प्यास नहीं
1: पानी मांगते
0: बुझेगी
1: रहेंगे,
0: जी,
1: और बॉडी टेम्परेचर 104, 103 से ऊपर चला
0: बढ़
1: जाएगा,
0: जाएगा
1: बढ़ता रहेगा,
0: बिल्कुल, जिस तरह बुखार में होता
1: बुखार
0: है
1: में। और बुखार आपने बोले तो मेरे जहन में एक बात
0: जी
1: आई कि हमारे अवेयरनेस, लापरवाही,
0: जी
1: या घरेलू नुस्खों में आधे
0: हाँ
1: नीम हकीम हर घर में होते हैं
0: सही कह रहे हैं आप,
1: और
0: हाँ
1: डॉक्टर्स भी होते हैं, आधे डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ गोलियों के नाम याद रहते हैं, तो उनकी गलतियों की वजह से सेल्फ मेडिकेशन में हम लोग बहुत बर्बाद हो रहे हैं, पेशेंट्स को भी बहुत बर्बाद कर रहे हैं,
0: जी,
1: सेहत से भी है। तो
0: एक
1: मैं
0: तरह से हम
1: सामयिक
0: सेहत के साथ खेल रहे
1: खेल
0: हैं
1: रहे हैं, मैं सामयिक से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना डॉक्टर के आप रेंटे की एसिडिटी की जो टैबलेट आती है वो भी नहीं लेना है आपको,
0: इतनी एहतियात करनी चाहिए
1: इतनी एहतियात
0: हमको,
1: करना चाहिए। हम लोग नॉट ए गोट, नॉट ए शीप, हम कोई ये नहीं, अल्लाह ने हमको
0: हाँ
1: अशरफुल मखलूक बनाए हैं,
0: सही कह रहे हैं,
1: तो अशरफुल मखलूक का काम है हर काम एहतियात से, बहुत सलीके से करना चाहिए।
0: हमको खुद पे तजुर्बे नहीं करना चाहिए,
1: 100 रुपये और 50 रुपये की सेविंग के लिए आप अल्लाह
0: सही
1: की
0: है
1: करोड़ों की जान को खतरे में डाल रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने
1: आप पेन किलर लेने चले जाते हैं
0: जी
1: मेडिकल में, बदन दर्द हो रहा, पेन किलर एक टैबलेट लिए, फार्मासिस्ट दे आर नॉट नोन टू द डेली प्रैक्टिस, हम वो फार्मासिस्ट डेली प्रैक्टिस को नहीं जानते कि क्या

0: है।
1: हाँ
0: तो हम यहाँ फार्मासिस्ट के इसमें नहीं बोल रहे कुछ, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि फार्मासिस्ट आपको ये नहीं पूछेंगे कि गैसेस है, पेट में जलन है, वो उठाएंगे डाइक्लोफेनिक सोडियम पेन किलर दे देंगे। अगर आप गैसेस के, एसिडिटी के पेशेंट हैं, मैदे में गर्मी है आपके, तो पेन किलर आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है,
1: इतनी खतरनाक हो सकती है ये?
0: क्योंकि अल्सर फट गया, परफोरेशन बोलते हैं उसको, अगर
1: जी
0: ब्लीडिंग हो रही है, अगर वक्त पे आप ब्लीडिंग को भी आप नुस्खे घरगुती कुछ अपना लिए, 2-3 घंटे
1: हाँ
0: लेट कर दिए, हो गया आपका हीमोग्लोबिन कम, जानलेवा तक पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से लू लगना में भी आप फार्मूले घर के यूज़ करते रहेंगे तो यहाँ तक के डेलीरियम एपिलिप्सी आ जाती है, एपिलिप्सी तक आप चले गए तो डेट इज़ क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ
1: अच्छा,
0: दी।
1: ये सिचुएशन क्या होती है बताइए?
0: वो सिचुएशन में कैसा है, अनकॉन्शियस, कोमा टाइप, सेमी कोमा टाइप हो जाते हैं
1: ओहो, ये
0: उसमें,
1: तो बहुत
0: तो वो
1: खतरनाक
0: रेयरेस्ट
1: हालत
0: होता है,
1: है
0: लेकिन वो
1: जी।
0: भी अपने
1: हो
0: फार्मूलों से
1: सकता
0: होता
1: है,
0: है।
1: हाँ
0: कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हर घर में रहते हैं, कुछ
1: जी
0: लोग
1: जी
0: अपने फार्मूले, तो 100-200 के चक्कर में इसमें मशवरा यह है, क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस

0: तो बहुत
1: तो वो
0: खतरनाक
1: रेयरेस्ट
0: हालत
1: होता है,
0: है
1: लेकिन
0: जी,
1: वो भी अपने
0: हो
1: फार्मूलों से
0: सकता
1: होता है।
0: है। हाँ
1: कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हर घर में रहते हैं, कुछ
0: जी
1: लोग
0: जी
1: अपने फार्मूले, तो 100-200 के चक्कर में। इसमें मशवरा यह है, क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर से एडवाइस लीजिए।
0: जी
1: इसके अंदर यही है दूसरा। और ये लू लगने के अलावा ऐसा, इसमें सोडियम और पोटेशियम
0: की मकदार।
1: वो ही इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है।
0: अच्छा
1: तो इसमें आपको मैं अलामतें ऐसे बोल सकता हूँ कि मतली लगना,
0: जी
1: उल्टी वोमिटिंग,
0: बिल्कुल
1: टेम्परेचर,
0: बढ़
1: दर्जे जिस्म का
0: जाएगा।
1: दर्जे
0: हाँ
1: हरारत
0: बढ़
1: 104
0: जाएगा।
1: से ऊपर जा रहा है या 103 से अब हो रहा है। और तीसरा आपका फीवर तो है,
0: जी
1: और रेयरेस्ट कुछ चीज़ें मसल क्रैम्प होता है,
0: ओहो
1: मसल्स आपकी
0: हाँ,
1: वीक होती है,
0: जैसा असाबी
1: थकवा
0: तनाव
1: थकवाट
0: जिसको कहते
1: फटीग बोलते हैं,
0: हैं।
1: आसाबी तनाव,
0: हाँ असाबी तनाव
1: आसाबी
0: और
1: तनाव
0: अकड़न सी एक हो जाती है बॉडी
1: एकदम,
0: में। हाँ
1: और थ्रॉबिंग टाइप हेडेक होता है, सर
0: अच्छा,
1: दर्द तो इतना
0: बहुत
1: होता
0: शिद्दत
1: है,
0: से।
1: हाँ इतना होता है ऐसा लगता फट जाएगा।
0: हाँ एक शदीद सर
1: हाँ
0: दर्द।
1: किसी किसी में जो सेंसिटिव है,
0: हाँ
1: टैलेंटेड लोग,
0: बहुत ज्यादा जो
1: उनको ऐसा
0: हसास
1: लगता है
0: होते
1: कि
0: हैं,
1: ईयर्स में गर्म हवा निकल रही है बाहर,
0: हवाएं निकल रही है,
1: कुछ
0: मतलब
1: सेंसिटिव
0: एक
1: पर्सन्स में।
0: तपिश सी गर्म
1: ये
0: हवा।
1: अलामतों में नहीं आ सकता, लेकिन ये एक्सपीरियंस बेसिस पे आ सकता है।
0: हाँ जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है,
1: हाँ
0: जो बहुत
1: वो बोल
0: ज्यादा
1: देंगे डॉक्टर साहब यार
0: हसास
1: गरम गरम
0: है।
1: लग रहा पूरा जिस्म,
0: हाँ बहुत जो
1: तो
0: हसास होते
1: हाँ
0: हैं, या फिर गर्मी का जिनका बहुत ज्यादा
1: जी,
0: मिजाज है,
1: तो वो इन सभी लोगों में
0: ये
1: ये सब
0: अलामतें
1: अलामतें
0: पाई जा
1: कॉमन पाई
0: सकती
1: जाती है,
0: हैं।
1: कॉमन। रेयरेस्ट में तो रेयरेस्ट होती है, फिर
0: हाँ
1: ब्लड प्रेशर, बीपी के पेशेंट है,
0: अगर वो है तो बढ़
1: वो है,
0: जाएगा।
1: शुगर है, तो उनके अलग ही अलामतें साबित हो सकती है, लेकिन
0: अच्छा
1: उनसे तो मशवरा है कि 12 से 4 बाहर ही नहीं
0: ना
1: जाना चाहिए।
0: निकले, जैसा कि हुकूमतें भी हमको अलर्ट
1: हाँ
0: करती है, बताती हैं,
1: जी
0: समाजी वेबसाइट्स भी बताते
1: जी
0: हैं कि आप ये टाइम पर अवॉइड कीजिए, बाहर मत
1: हाँ
0: जाइए।
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कुछ ज़रूरी काम हो जाते हैं, जैसे आपने जिक्र किया था कि जो लेबर है हमारे,
1: हाँ हाँ
0: मजदूर है, तो इनको काम करना ही होता है। फिर इसी के साथ हम जैसे देखते हैं तामीरी जो सरगर्मियाँ होती है वो मौसम गर्मा में ही ज़्यादा होती है, लोग
1: जी
0: अपने घर बनाते हैं तो, और वो खुद भी बहुत बिजी होते हैं, फिर उनके साथ मजदूर भी होते हैं, घर के
1: जी
0: लोग भी होते हैं। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि जो घर में हम जैसे डॉक्टर्स के पास जाने से पहले फौरन से फर्स्ट एड के तौर पर हम घर में
1: जी
0: क्या
1: जी
0: एहतियात कर सकते हैं अगर किसी को लू
1: बेसिकली
0: लग
1: देखा
0: जाए?
1: जाए लू में, बेसिकली देखा जाए तो ऑल द ट्रीटमेंट, अगर इमरजेंसी टाइप नहीं है तो घर के ही, आप डॉक्टर के मशवरे से चलना है,
0: जी
1: लेकिन घर के ही ट्रीटमेंट है सभी। इसमें
0: अच्छा, किस किस्म के हो सकते हैं ये?
1: आप एकदम एक्सपोजर टू, जैसे बाहर जा रहे बहुत धूप में है,
0: हाँ
1: वैसे ही धूप अब इनके बॉडी के अंदर है।
0: ओहो
1: टोटल बॉडी इज
0: जी
1: नाउ
0: जी
1: हीट, हीट
0: बिल्कुल
1: स्ट्रोक,
0: बिल्कुल
1: टोटल बॉडी इज बहुत गर्म हो चुकी है।
0: सही।
1: सबसे पहला काम आपको करना है, अगर घर में एसी है
0: हाँ
1: तो आप एसी को फुल डाउन कर सकते, कूल में रखिए।
0: अच्छा,
1: नंबर वन,
0: तो
1: एसी
0: हाँ
1: नहीं है
0: जी,
1: तो आप घर में जहाँ पर भी आप पानी का जखीरा रहता है आपका, जहाँ पानी रखते हैं
0: हाँ
1: वहाँ ले जाकर ठंडा करिए,
0: यानी कि ऐसी जगह जहाँ का दर्जा
1: कोल्ड
0: हरारत बिल्कुल कम हो,
1: काम हो तो
0: बिल्कुल
1: वहाँ पर
0: ठंडा
1: आप
0: हो।
1: रखिए।
0: हाँ मरीज को वहाँ
1: फिर
0: ले जाए हम।
1: कोल्ड स्पंजिंग करिए आप,
0: अच्छा
1: कोल्ड स्पंजिंग मीन्स ठंडे कपड़ा।
0: हाँ कपड़े से
1: ठंडे कपड़े के भी 4-5 पॉइंट बेसिक इतने अच्छे हैं,
0: बताइएगा, जरूर
1: फोरहेड,
0: बताइए।
1: फोरहेड पे है, नेक पे है,
0: हाँ
1: और ग्रोइन पे है, एक्जिला पे है, तो आप वहाँ पर ठंडी ठंडी चीज़ें, या आइस, आइस अगर टॉवेल में बांध दे, रुमाल में बांध
0: जी,
1: दिए, हर जगह आइस को घुमाइए, कोल्ड
0: आइसिंग
1: आइस
0: करना
1: का,
0: होगा
1: हाँ
0: हमको।
1: आइस, आइस ऐसा
0: हाँ
1: फिराते रहिए
0: सर पर भी लगा सकते हैं।
1: सर पे, मीन्स वो आप रुमाल में
0: हाँ
1: बांध दिए तो आप
0: हाँ
1: इधर भी
0: जी
1: ये
0: जी
1: करिए जैसा
0: हाँ
1: स्पंजिंग करते हैं वैसे
0: स्पंजिंग
1: स्पंजिंग,
0: करना
1: आइस
0: है।
1: स्पंजिंग करते रहिए।
0: तो यहाँ मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है कि अब वो जो मरीज़ है जिसको लू लग गई है तो उसकी बॉडी में बहुत हीट जमा हो गई है, अब हम उसको बाहर से कोल्ड वाला प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसका जो मतलब बॉडी सिस्टम है तो उसको कैसे रिएक्ट करेगा?
1: उसमें कैसा है, थैलमस, हाइपोथैलमस आपको बोल रहा हूँ मैं, हाइपोथैलमस में उसका काम ही है मेंटेन करके रखना। बाहर सर्दियों में बहुत ठंडी रहती है,
0: जी
1: फिर भी हम 98.6 पे रहते हैं,
0: हाँ
1: हम हाइपोथर्मिया में नहीं जाते हैं,
0: जी
1: मेंटेन रहता है हमारा जिस्म का दर्जा हरारत। जब कोल्ड हो जाते हैं बॉडी ज़्यादा नॉर्मल से, तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं,
0: अच्छा,
1: यानी जिस्म का दर्जा हरारत बिलो द नॉर्मल, नॉर्मल से कम हो जाना,
0: कम गिर जाएगा वो।
1: तो उसे
0: हाँ
1: हाइपोथर्मिया। लेकिन अभी हम हीट स्ट्रोक में हैं, हाइपरथर्मिया में है,
0: हाइपर में है,
1: तो
0: राइट।
1: हाइपरथर्मिया में आप ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं तो वो उसको सुकून के लिए कर रहे हैं आप,
0: अच्छा, तो
1: हाइपोथैलमस।
0: उसका हमको साइड इफेक्ट नहीं होगा?
1: साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स नहीं है उसके अंदर,
0: हाँ
1: वही ट्रीटमेंट है
0: क्योंकि
1: उसका।
0: हमारे पास एक मेंटेलिटी होती है कि गर्म और सर्द अगर मिला दें आप बॉडी में तो उसमें कुछ भी रिएक्शंस हो सकते हैं।
1: वो हाइपोथैलमस तो दुआ देंगे आपको कि
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: लिए अब मेरा काम
0: बिल्कुल,
1: अच्छा हो रहा
0: बहुत
1: है,
0: अच्छी बात कही आपने कि वो आप हम उसको सपोर्ट कर रहे
1: सपोर्ट कर
0: हैं
1: रहे हैं
0: मेंटेन करने के लिए,
1: जी।
0: रीसेट कर रहे हैं उसको।
1: हाँ हाँ रिसेट चाहिए उसको, आपका परफेक्ट वर्ड उसमें रिसेट है वहाँ पर।
0: बिल्कुल रिसेट कर रहे हैं हम। तो अब देखिए,

0: हम आपने ये बहुत दो तीन अच्छे पॉइंट बता दिए कि अगर किसी को लू लगती है तो फौरन से आप उसको घर के जो सबसे कम दर्जे हरारत वाली जगह है, मुकाम है, वहां पर
1: हाँ
0: उसे
1: हाँ
0: रखे, उसको स्पंजिंग करे, आइस से भी कर सकते हैं आप
1: कोल्ड
0: और
1: वाटर
0: ठंडे
1: से,
0: कोल्ड वाटर से
1: ठंडा
0: भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं
1: और गिजाओं में है। अब
0: जी?
1: यहाँ स्टार्ट होता है आपको देना क्या है,
0: अब उसको मतली हो रही
1: अब
0: है,
1: मतली हो रही है बार
0: उसको
1: बार।
0: वॉमिटिंग भी आ सकती
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: तो अब उसको क्या देंगे हम?
1: वॉमिटिंग तक अगर गया तो आप अच्छे डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके आप RL NS लगवा सकते हैं। उसमें वो जो भी ट्रीटमेंट उनको जो दे सके, हम तो
0: हाँ,
1: यहाँ ट्रीटमेंट की बात नहीं करने बैठे,
0: नहीं
1: हम
0: नहीं
1: लू
0: हम
1: की
0: सिर्फ
1: बात कर
0: फर्स्ट
1: रहे
0: एड की
1: हैं।
0: बात कर रहे हैं कि
1: आप,
0: डॉक्टर के पास जाने
1: हाँ,
0: तक हम कैसे
1: तो
0: करें?
1: डॉक्टर के पास जाने तक आप पहले तो पानी, आप कोकोनट वाटर दीजिए।
0: ना, ये बिल्कुल सही कहा आपने।
1: कोकोनट वाटर में आपको सोडियम भी मिल जाएगा
0: हाँ
1: और पोटेशियम भी मिल जाएगा,
0: जी, तो समय
1: वो
0: ना
1: दोनों ही
0: आप
1: आपको हाइपरथर्मिया से बाहर निकालेंगे,
0: जी
1: सोडियम पोटेशियम। बाकी दूसरे जो मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो
0: जी
1: इतना ही नहीं, ये दोनों ही कम हो जाते हैं।
0: हाँ, ये
1: तो
0: दो
1: ये
0: चीज़ें
1: दोनों
0: बॉडी
1: मेंटेन
0: में
1: हो रहे हैं
0: कम
1: तो
0: हो
1: बॉडी
0: जाती
1: मेंटेन हो
0: है
1: रही, आपको
0: इंशाल्लाह
1: एकदम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं आप। तो पहला तो आपका है कोकोनट वाटर,
0: जी। फर्स्ट
1: कोकोनट वाटर जितना नहीं अवेलेबल है कोकोनट वाटर, तो उसका भी मैं
0: ऑप्शन
1: हर घर
0: बताइए।
1: में जो
0: हाँ
1: चीज़ अवेलेबल होती है,
0: जी,
1: अगर आपके यहाँ इमली है तो इमली का शरबत बनाइए, अच्छे से इमली का शरबत पीजिए।
0: हाँ, मैं समझती हूँ समय मेरी तरह आप भी पहली बार सुन रहे होंगे कि इमली का शरबत भी लू में लिया जाता है। हम कैरी के शरबत के बारे में जरूर जानते हैं, आपशोला
1: मैं
0: जिसे
1: आने
0: कहा
1: वाला था
0: जाता
1: कैरी
0: है
1: शरबत पे भी, लेकिन
0: जी
1: वो
0: जी
1: भी सीज़नल है, नहीं है
0: हाँ
1: अवेलेबल, क्या करेंगे। इमली
0: जी
1: तो हर घर में है,
0: बिल्कुल,
1: लेमन
0: और
1: हर घर
0: हमारे
1: में
0: पास
1: है।
0: खट्टी दाल के लिए तो इमली बहुत ज़रूरी है और हमारे हर घर में पाई जाती है,
1: जी,
0: ये
1: तो
0: बिल्कुल
1: आपके
0: मैं
1: यहाँ
0: फील कर
1: लेमन भी हर
0: सकती
1: घर में है,
0: जी।
1: तो आप लेमन शरबत बनाकर दीजिए या पानी में डालकर नींबू दीजिए वैसा, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की तरफ आप चले फिर उसके अंदर।
0: ये बहुत इफेक्टिव
1: हाँ
0: चीज़ें आपने
1: तो
0: बताई
1: उस,
0: और ये हमको आसानी से
1: जी जी
0: दस्तियाब हो
1: जी
0: जाती है। लीमू महंगे ज़रूर हो गए हैं, लेकिन
1: हाँ
0: इसे
1: हाँ
0: घर में ज़रूर रखिए सामाई, ताकि हमको ये इमरजेंसी में काम आ सके।
1: और सबसे बड़ी बात है, अभी हम लोग पुराने ज़माने के दौर में नहीं देखते, उस वक्त के दौर में, अब एक गलतफहमी ये जहन से निकालना है कि प्याज जेब में रख दिए तो लू नहीं लगती
0: जी,
1: है,
0: सफ़ेद प्याज के बारे में कहा जाता
1: सफ़ेद हो
0: था।
1: लाल हो, ये
0: हाँ
1: साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है। मेरे जहन में तो ये मिस गाइडेंस है, ये मिसकंसेप्शन है,
0: मिथ है,
1: अंधविश्वास है,
0: हाँ
1: हाँ मिथ
0: अंधविश्वास
1: है,
0: एक मिथ है,
1: तो ये इस पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बायवज वही प्याज
0: आप खा सकते
1: आपके घर
0: हैं
1: पे,
0: जी।
1: लेमन भी नहीं है, इमली भी नहीं
0: हाँ
1: है,
0: जी
1: हर घर
0: जी
1: में प्याज है, उसका आप जूस बनाइए और
0: अच्छा, उसको
1: कान के पीछे
0: मसाज
1: आप,
0: करना है।
1: जिसको सन स्ट्रोक, हीट
0: हाँ
1: स्ट्रोक हुआ है,
0: जी,
1: कान के पीछे, दोनों भी कानों के पीछे आप ये करिए, और पैरों के नीचे तलपाओं
0: तलवों
1: में
0: पर भी उसको लगाना
1: उसको
0: है
1: अच्छे से लगवा दीजिए, आपको
0: प्याज के
1: बहुत
0: रस
1: ज़्यादा
0: को।
1: सेटिस्फाइड। सबसे जिंदा तिलिस्मात फार्मूला है वो,
0: अरे वाह, क्या वर्ड आपने इस्तेमाल किया है डॉक्टर
1: तो
0: साहब
1: ये प्याज का है, तो
0: जी।
1: प्याज का ये बेनिफिट सबसे ज़्यादा अच्छा है इसके अंदर।
0: हमने
1: आप
0: अभी तक तो यही सुना था कि प्याज को खाना चाहिए मौसम में गर्मा में ठंडक और ताजगी के लिए,
1: हाँ
0: और बरसात के मौसम में इन्फेक्शन से बचाव के लिए, लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं। मैं समझती हूँ सामाइन भी पहली बार सुन रहे होंगे कि प्याज का हर खाप को निकालना है,
1: जी
0: और निकालकर फौरन उसको कानों के पीछे वाले हिस्से में, जैसे हम वजू के दौरान मसाज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप मसाज कीजिए और तलवों पर लगा दीजिए।
1: जी बेशक।
0: और खाने के ताल्लुक से क्या कहेंगे सर, नॉर्मल
1: और
0: जो गर्म?
1: अभी इसमें और मुझे ऐड करना है,
0: जी
1: एलोवेरा
0: बताइए।
1: जूस
0: हाँ
1: अगर आपके यहाँ, और वो भी नहीं है, प्याज भी नहीं टाइम पर, तो एलोवेरा जूस है घर में तो रहता है गुमले में लगा हुआ,
0: जी, वो
1: तो उसका
0: पौधे
1: एलोवेरा
0: से,
1: जूस भी
0: हाँ
1: आप लेमन की तरह ले सकते हैं उससे।
0: उसको पानी में मिलाकर
1: हाँ और
0: आप
1: दूसरा
0: उस,
1: एक ये कि एहतियाती तौर पे फिट कपड़े जो पहनते हैं ना,
0: हाँ, वो लूज
1: वो भी
0: कपड़े,
1: वेरी सेंसिटिव, प्रॉन टू द हीट स्ट्रोक, उन्हों को जल्दी से लू लग सकती है।
0: अच्छा जिनके लिबास बहुत तंग
1: हाँ तो
0: होंगे,
1: ब्रेथलेस लिबास पहनने से अच्छा है ब्रेथ वाले लिबास पहनना है, यानी जिसमें
0: बिल्कुल
1: कुछ आपको हवा
0: कंफर्टेबल हो
1: लगे,
0: आप, हवादार हो, जो
1: हवादार
0: ढीले
1: हो,
0: ढाले हो
1: हाँ हवादार, जिसमें से हवा लग सकती है
0: जी।
1: आपको,
0: हाँ
1: तो उसमें भी आप लूज क्लॉथ पहन सकते हैं, तो वो भी फायदेमंद है आपके लिए साबित उसमें।
0: समाइन आप सुन रहे होंगे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे मशवरे हमें दे रहे हैं, और सिर्फ खाने और किस तरह एहतियात की जाए वो नहीं बता रहे हैं, बल्कि सब कुछ कवर कर रहे हैं वो, कि कैसे हम लिबास पहने और किस किस्म की एहतियात करें। क्या कलर का भी कुछ असर होता है डॉक्टर साहब? कलर्स जो मतलब कहा जाता है कि अगर व्हाइट कलर पहनते हैं तो ज़्यादा
1: कलर का
0: मुनासिब
1: इसका
0: रहता,
1: साइंटिफिकली अभी तक
0: प्रूवन
1: मैंने
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: सुना हो,
0: जी।
1: तो वो अब जिसके पास है वो
0: हाँ,
1: वहीं तक रहने
0: और
1: दीजिए।
0: कॉटन का क्या करेंगे सर, मतलब कॉटन का पहनना ठीक होगा?
1: कॉटन ही बेस्ट है इसमें,
0: कॉटन ही
1: लू
0: बेहतर
1: लगने में
0: रहेगा।
1: कॉटन सबसे अच्छा है, गर्म नहीं होता है,
0: हाँ
1: मौसम को जल्दी अडप्ट, अपने जो थैलमस का काम है,
0: जी,
1: हाइपोथैलमस का काम है, वो काम कर
0: उसी
1: ले
0: को
1: रहा है, वो
0: सपोर्ट
1: सब
0: करता
1: सपोर्ट कर
0: है,
1: रहा है
0: ये
1: वो, तो कॉटन तो
0: सपोर्टिव
1: बेस्ट
0: होता
1: है
0: है।
1: वो।
0: तो देखिए समय ने आपको क्या करना है, कि ढीले ढाले

0: कपड़े पहनना है मौसमी गर्मा में, और तंग लिबास ना पहने क्योंकि काफ़ी गर्मी होती है, फिर सारा हीटिंग स्वेटिंग होती है, तो उसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम ढीले ढाले कपड़े पहने, हवादार रहे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब कि हमको पानी कितना इंटेक करना चाहिए, पानी
1: पानी
0: कितना
1: पर ही
0: पीना
1: आ रहा
0: होगा?
1: होता मैं,
0: जी ज़रूर
1: जब
0: बताइए।
1: तक आपके मतली का कंप्लेंट दूर नहीं होता है,
0: हाँ
1: पानी पानी की तबीयत आपकी जब तक सैर नहीं होती है तब
0: जी,
1: तक पानी लेना है आपको।
0: अच्छा, जब
1: चाहे
0: तक
1: आप ये
0: ये,
1: लेमन का पानी
0: हाँ हाँ
1: लीजिए,
0: हाँ
1: कोकोनट का
0: जी
1: लीजिए, ये
0: जी
1: पानी लेना है आपको तब तक पीना है।
0: तो हम मरीज को इतना पानी पिलाए जब तक कि वो उसकी प्यास
1: हाँ,
0: दूर ना हो जाए।
1: क्योंकि वाटर इंटेक ही नहीं है अब उसके अंदर,
0: हाँ
1: वाटर
0: बिल्कुल
1: इंटेक कम हो गया
0: जी,
1: तो बॉडी में भी फ्लूड कम हो रहा है,
0: हाँ
1: फ्लूड कम होने से इधर स्ट्रोक हो गया,
0: जी,
1: हीट स्ट्रोक, तो हम वो मतली मतली कर रहा है। मतली जब तक दूर नहीं होगी,
0: हाँ
1: नौशिया बोलते हैं उसको इंग्लिश में
0: जी
1: मतली
0: जी
1: को,
0: नौसिया, हाँ
1: तो नौशिया जब
0: नौसिया,
1: तक वो वॉमिटिंग की तरफ भी जाता है तब आपको फिर इंजेक्टेबल में आपको वो हिसाब से करना है कि टैबलेट्स लेना है या इंजेक्शन लेना है, तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करना है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरा मशवरा अपने मेट्रो सिटीज़ के इतने क्वालिफाइड शरीफ,
0: हाँ
1: इतने हम लोग आए इतने अच्छे हैं, तो मशवरा यह है कि क्वालिफाइड से ही इलाज किया जाए।
0: सही,
1: आपको मशवरा बार बार हम इसलिए दे रहे हैं कि हमने देख चुके हैं इसके साइड इफ़ेक्ट।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: हफ्ते के तकरीबन सिर्फ हैदराबाद में ही 5% पेशेंट्स खराब हो रहे हैं ये चीज़ों से, सेल्फ मेडिकेशन से। सेल्फ मेडिकेशन से कई पेशेंट खराब हो रहे हैं इसके अंदर। आप पेन किलर खा रहे हैं, पेन किलर से तो बहुत खराब हो रहे हैं इसमें। पेन किलर से अभी कई पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरी होम्योपैथी दवाई ले रहे हैं,
0: जी
1: वो लोग 20 साल 30 साल पहले से कहीं पेन था जाकर 2 इंजेक्शन लेकर आते थे पेन किलर, एक बोलता डॉक्टर एक लो, वो बोलते 2 लगवाओ।
0: तो हमारे पास ये इंजेक्शन लेने का रुझान इस तरह पाया जाता है कि समझते हैं कि फौरन से दर्द गायब हो जाएगा और हमको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा, तो इसीलिए भी इंजेक्शन लगवाने का
1: तो
0: हमारे पास
1: मशवरा
0: ज्यादा
1: ये है
0: रुझान।
1: कि
0: हाँ
1: डॉक्टर को भी ना सताएं, एक इंजेक्शन के 2 लगवा दें।
0: जी
1: अब वो ही बेचारा अच्छा डॉक्टर था तो
0: हाँ
1: एक लगवा रहा है,
0: जी,
1: कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं कि आपको बिना पूछे बिना बीमारी पूछे 2 इंजेक्शन रेडी है कहीं कहीं।
0: और ग्लूकोज
1: हम
0: भी
1: भी ऐसे
0: ऐसे ही
1: दें,
0: लगाया जा रहा है आजकल।
1: ग्लूकोज वाले तो वो अल्लाह ही बेहतर जाने हो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। वो चीज़ में आप स्टैंडर्ड माइंड, हमारा अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: ग्लूकोज वाले
0: तो
1: खुद
0: कब
1: भी,
0: जरूरत होती है ग्लूकोज लगवाने की, आप बताइए।
1: ग्लूकोज का डिसाइड करेगा सिर्फ हॉस्पिटल,
0: अच्छा
1: एमडी मेडिसिन, आपका कॉमन डिजीजेज में एमडी मेडिसिन ही डिसाइड करेंगे कब ग्लूकोज क्या है।
0: जी,
1: ये नॉर्मल फेनोमेना बन गया है कि जाओ बुखार आ गया
0: हाँ
1: ग्लूकोज लगवा लो।
0: इंजेक्शन और ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ हो गई कि ये लगाते ही हम में तवानाई आ जाएगी, हम में ताकत आ
1: ये
0: जाएगी,
1: भी एक
0: हम
1: अंधविश्वास है, ये भी एक
0: अच्छा
1: क्या बोलना चाहिए, तो वो भी एक उसमें यह है कि ग्लूकोज से हम अच्छे हो जा
0: वहम
1: रहे
0: है,
1: हैं, वहम है। हाँ
0: एक तरह
1: वहम,
0: का वहम है ये।
1: ये वहम में ही हम ग्लूकोज लगवा के अच्छे केसेस खराब हो रहे हैं। अब बताइए सनस्ट्रोक का तो फीवर जाने दीजिए,
0: हाँ
1: नॉर्मल फीवर में कुछ सेप्टिसेमिया है कुछ है, लंग्स में पानी है आपका,
0: जी,
1: निमोनिया हो गया,
0: निमोनिया है
1: उसमें जाकर 4 ग्लूकोज लेके भी मर रहे हैं पेशेंट, उसको तो पैसे चाहिए जो सामने ग्लूकोज लेके बैठा है, वो तो बिना बोले आपको ग्लूकोज लगवाएंगे, लेकिन आप भी जाके प्रेशर कर रहे हैं कि हमको ग्लूकोज चला दो अच्छे होंगे, और वो घर पे जाके एक्सपायर हो जाता हूँ। अब
0: हाँ
1: वो डॉक्टर क्या है, डिग्री क्या है मालूम नहीं, वल्ला आलम, वो आपको ग्लूकोज चढ़ा रहे, ग्लूकोज लगवा रहे, वो ये नहीं बोल रहे कि आपके लंग्स में पानी है क्या है, दे दिए, वो घर पे जाकर ही हो रहा है। तो ये आप आपकी जान से खेल रहे। मेरा पहला अल्फाज आपके
0: हाँ
1: इंटरव्यू
0: जी
1: ये
0: जी
1: इसमें
0: हाँ
1: पॉडकास्ट में कि वी आर नॉट गोट, वी आर नॉट शिप, हम
0: हाँ
1: जानवर ने अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाए, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करिए कि मुझे ग्लूकोज लगवा दो, मुझे इंजेक्शन लगवा दो।
0: क्योंकि ये वहम होता है ना हमको कि ग्लूकोज लगवाने से हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छा होगा
1: आप
0: हमारे
1: होम्योपैथी
0: लिए।
1: के अलावा आप सभी पैथी अच्छी है,
0: हाँ
1: आप दूसरी पैथी का भी इलाज ले रहे हैं तो टैबलेट से ही काम चलाइए,
0: जितना हो सकता
1: इमरजेंसी में
0: है,
1: किंग है,
0: हाँ
1: इमरजेंसी में एलोपैथी किंग है,
0: जी,
1: आप उसका फायदा टैबलेट से लीजिए। आप वोमिटिंग है, टैबलेट बेयर नहीं कर सकते तो फिर इंजेक्शन की तरफ सोचेंगे, डॉक्टर का काम है वो
0: सही,
1: आपका काम नहीं, आप डॉक्टर
0: हाँ
1: को बोल रहे जाके इंजेक्शन लगवा दो, वो
0: हमारे
1: डॉक्टर का
0: पास
1: काम
0: थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत, बल्कि ओवर
1: है।
0: कॉन्फिडेंस कह सकते
1: हाँ,
0: हैं हम कि हम
1: ये
0: समझते हैं कि हम अपना इलाज खुद कर लेंगे। तो ये अभी आप बता रहे थे कि सेल्फ मेडिकेशन जो किया जाता है
1: जी,
0: कि बस कुछ भी होते ही हम अपने तौर पर जाते हैं और अपने हिसाब
1: हाँ
0: से मेडिसिन चॉइस
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: तो हम इसको मतलब कैसे रोक सकते हैं?
1: अवेयरनेस चाहिए
0: अच्छा
1: हर चीज़ में, गवर्नमेंट ने भी पहल करना चाहिए, हर जगह आप जा रहे खुद से दवाई दे रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो वो भी बैन चाहिए कि दवाई खुद से नहीं चाहिए, डॉक्टर की चिट्ठी लाइए तो ही टैबलेट्स मिलेंगी,
0: हाँ, जैसे कि बाहर के
1: और
0: मुल्कों
1: आपका
0: में
1: फैमिली
0: फॉरेन में
1: डॉक्टर को
0: देखते
1: भी
0: हैं हम
1: कुर्बानी देना चाहिए। जैसे
0: जी
1: मैं
0: जी
1: बोलता हूँ मेरे जो भी रिलेशन में है सब अच्छे से प्रैक्टिस,
0: हाँ
1: भाई आपका फैमिली डॉक्टर है, आपका फैमिली पेशेंट है, वो अगर आकर आपको रुबाब से बोले, फ़ख्र से बोले कि आज मेरे पास फीस नहीं है, या मैं सरदर्द के लिए टैबलेट की गोली के लिए जा रहा था, मुझे सरदर्द की गोली मेडिसिन मन से नहीं चाहिए, आप लिख कर दीजिए मैं फीस नहीं देता हूँ, तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, आप लिख कर दीजिए, आप 100 रुपये

0: पीछे, 200 के पीछे नहीं जाना आपको।
1: ये बहुत बड़ी बात आपने कही है।
0: आप 100-200 रुपए के छोड़िए, उसकी जान के लिए आप लिख कर दीजिए सब हिस्ट्री लेके।
1: ये बिल्कुल डॉक्टर का जो पेशा होता है
0: हाँ,
1: उसके फर्ज की बात कर रहे हैं आप, कि
0: आपके
1: उसको पेशेंट से
0: 100-50 की
1: ज्यादा।
0: ओपीडी में
1: जी
0: आपके
1: जी
0: 5 पेशेंट ऐसे आएंगे,
1: हाँ बिल्कुल
0: आप
1: सही।
0: कुर्बानी दीजिए, उतना आपका जमा हो रहा है अल्लाह के यहाँ पर, जो भी जमा है तो आपके
1: जी
0: अच्छा ही
1: जी
0: है।
1: और आप अपने पेशे के साथ बहुत अच्छे से
0: उसकी
1: वफादारी
0: बरकत ही अलग
1: निभा
0: होती
1: रहे
0: है, उसकी
1: हैं।
0: बरकत ही अलग होती है। आप
1: बिल्कुल
0: कहीं जा
1: सही
0: रहे
1: कहा
0: हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप एक्सीडेंट से बच गए, वो पैसे बीच में आ गए आपके सब।
1: जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। मैं सामाईन आपसे यही कह रही थी कि डॉक्टर साहब के पास एक हमदर्दी है जो इस पेशे की मैं समझती हूँ बहुत बुनियादी रूह है,
0: जी
1: कि मरीज से हमदर्दी हो, अपने मुआशरे से, अपने सोसाइटी से हमदर्दी हो, कि हम लोगों का इलाज करने के लिए है, सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं काम कर रहे हैं।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी हमको मालूमात दी है। तो अब अगले सवाल की तरफ मैं जाना चाहूँगी। आपने हमें बताया कि अलामतें क्या होती है, घर पर कैसे हम डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पर सब क्या ट्रीटमेंट लें। तो अब हम आते हैं, रुख करते हैं एज ग्रुप्स के जाने, जैसे कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, ज़यीफ़ लोग होते हैं। तो अब इनमें से अगर किसी को लग जाए, और कभी कभी तो ये भी होता है कि ख्वातीन जो किचन में काम कर रही होती है तो वो लगातार जब धूप में काम करती रहती है तो अचानक से उनको चक्कर आ जाती है, या ये सारी अलामतें जाहिर हो जाती है, मतली और उनका बीपी हाई होता है और घबराहट होती है उनको। तो ऐसे सारे एज ग्रुप के लिए आप क्या मशवरे देंगे?
0: इसमें ज़्यादा ऐसा है, लू लगने का कंप्लेंट्स तो सबसे ज़्यादा लेबर्स में आता है,
1: जी
0: और सबसे ज़्यादा खतरा जो लाहक है इन्फांट डेवलपिंग
1: जी
0: चिल्ड्रंस,
1: बिल्कुल, जो नौ वर्ष लड़कपन के जो छोटे छोटे
0: हाँ,
1: बच्चे हैं।
0: जो उनके ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं,
1: हाँ
0: सब बॉडी डेवलप हो रही है, उसको मालूम नहीं है कैसे मेंटेन करना।
1: सही है
0: उसने पूरा भी माहौल देखा नहीं है कि
1: जी।
0: ये साल में ये आता है, ये महीने में ये
1: हाँ
0: आता
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल
0: तो उसकी बॉडी अननोन है उस चीज़ों से। तो सबसे ज़्यादा बच्चों को बचाना है,
1: जी। किस तरह बचाए हैं उन्हें?
0: धूप से बचिए बस,
1: जी
0: 12 से 4 बच्चों को ज़्यादा। अब मैं जाता हूँ कई कई मोहल्लों में, कॉलोनीज में देखता
1: हाँ,
0: हूँ,
1: धूप में तो
0: बच्चे
1: बहुत
0: धूप में
1: खेलते
0: खेलते
1: हैं
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो आप उस पर ज़रा अवेयरनेस लाना है उसे। फिर बुज़ुर्गों में आप बुज़ुर्गों से ये मशवरा दे सकते हैं हम कि 6 के बाद ही बाहर निकलिए, आपको कुछ मार्केट जाना है, घर में कोई
1: वॉकिंग
0: नहीं,
1: करना है जो भी
0: बच्चे
1: है।
0: USA में,
1: हाँ
0: बच्चे बाहर है, फॉरेन
1: सही।
0: में है, घर में 2 ही है, अंकल आंटी है घर में,
1: हाँ
0: अंकल आंटी को ये रिक्वेस्ट है कि आप 6 बजे के बाद करिए जो भी काम करना है आपको,
1: जी,
0: मार्केटिंग
1: बाहर का जो भी
0: बाहर
1: है।
0: का जो भी है, 12 से 4 अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप भी बीपी के पेशेंट हैं, आपके भी
1: हाँ
0: ऑर्गन सभी सब जी चुके हैं, तो आप खतरे की तरफ है आपके ऑर्गन्स,
1: जी
0: क्योंकि आपने टोटली क्या बोलना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं खाए,
1: हाँ
0: आपको भी अभी स्प्रे का, इसका केमिकल्स की चीज़ें मिल रही, तो आपका किडनी भी आपके अभी मालूम नहीं कैसा हो रहा है एज में।
1: जी।
0: अब गोलियां टेबलेट्स तो ले ही रहे
1: हाँ
0: आप
1: कंटिन्यू होते
0: बीपी की,
1: हैं
0: शुगर की, तो आप उसमें आपकी पता नहीं क्या ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट है। फिर इधर से आपका हाइपोथैलेमस सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, फिर उसके बाद आपको हीट स्ट्रोक हो गया, तो आप तो और खतरे में, कोविड की तरह खतरे की तरफ जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए। अगर इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी है,
1: हाँ
0: अम्ब्रेला
1: बिल्कुल,
0: लीजिए, छतरी लीजिए,
1: ये आपको रखना है, आपको
0: छतरी साथ
1: हमेशा साथ
0: में।
1: रखना है।
0: आप बच्चों के लिए भी एडवाइस है कि छतरी, आप लोग हंसेंगे
1: हाँ
0: क्या बोलेंगे, बहुत नाजुक है वो, चलता है, हंसने वाले हंसते, अपना काम
1: जी
0: अपने
1: जी
0: करना है,
1: और खासकर नई जनरेशन तो इस बात को पसंद नहीं करती
0: नहीं
1: है
0: पसंद
1: कि वो
0: करे।
1: छतरी लेकर बाहर
0: जी जी जी
1: घूमे, वो कड़ी धूप में निकलती हैं।
0: उससे बेहतर इलाज है कि जो आपको लीगली सबसे अच्छा आपको खूबसूरत लगता है सर
1: जी
0: पे, वैसा बांध के निकलिए।
1: स्कार्फ
0: मेन है
1: टाइप में
0: आपका
1: जी।
0: कान के अंदर से जो एयर ड्रम है ना,
1: हाँ हाँ
0: लू से हमारी स्किन पे आप माचिस की तीली से भी आप जला दे, तो हम क्या हो रहा नहीं होते, हमारा हाइपोथैलेमस हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपका स्ट्रोक लग गया, नहीं
1: हाँ
0: होता। सबसे ज्यादा धूप का जाने का खदशा कान में से है आपके एयर ड्रम से।
1: अच्छा, सामाईन इस बात को नोट कर लीजिए कि धूप में जो सबसे ज़्यादा खतरा पैदा होता है वो कानों के ज़रिए होता है,
0: हाँ,
1: और कानों में जैसे ही वो
0: लू
1: धूप
0: पहुंचे,
1: की लहरें जाएगी या फिर उसकी श्वाएं जाएगी, सूरज की
0: हीट जाएगी,
1: हीट जाएगी, हरारत
0: हाँ,
1: जाएगी,
0: हरारत जाएगी,
1: तो वो हरारत से आपके दिमाग पर हिद्दत
0: ऑफकोर्स
1: बढ़ेगी।
0: पढ़ना है वहीं से, एकदम
1: हाँ
0: नियर टू द है, मिलीमीटर सेंटीमीटर में करीब है
1: जी
0: वो,
1: जी जी तो
0: तो वो तो वहीं से आना है
1: सबसे
0: उसको, तो पहले
1: बिल्कुल
0: कान
1: बड़ा
0: पर बांध के
1: जरिया
0: रखिए,
1: आपके कान
0: कॉटन
1: साबित
0: का
1: होते
0: रुमाल
1: हैं।
0: कान पर चाहिए ही चाहिए, कानों के ऊपर।
1: तो ये पुराने मतलब कदीम जमाने में देखते थे हम कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: एक रुमाल बांधा करते
0: बेशक
1: थे।
0: जरूरी है वो, चाहे दुनिया
1: तो
0: कुछ भी आपको समझे
1: हाँ जी
0: कैसे भी,
1: जी
0: यू हैव टू लिव सिंपली ऑन, ये हीट स्ट्रोक से बचना है तो।
1: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सीधा साधा और बहुत मुफीद मशवरा आपने दिया है कि अब आप उसको आप नए मॉडर्न स्टाइल से बांध लीजिए, उसको किसी तरह कर लीजिए, लेकिन आपके कानों को बचाना है आपको ताकि वो धूप से महफूज रह
0: ऑल
1: सके,
0: एज ग्रुप के लिए एडवाइस है ये, सभी
1: सभी
0: के लिए
1: ग्रुप
0: है।
1: के लिए।
0: जी जी
1: तो जब भी आप बाहर निकले

0: इमरजेंसी में जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने कानों को धूप से ज़रूर बचाइए,
1: जी
0: ताकि आपके दिमाग पर धूप का असर ना हो।
1: जी
0: और वो असर जाकर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि वो धूप का जो शिद्दत होती है, धूप का जो असर होता है, वो सारी आपकी बॉडी में जाकर वहाँ पर भी वही माहौल क्रिएट करता है,
1: जी जी
0: और जिसको बर्दाश्त करना आपकी बॉडी के लिए नामुमकिन हो जाता है।
1: बेशक
0: तो डॉक्टर साहब, अब ये तो हमने एहतियात कर ली कि सर पर रुमाल बांध लिया या अपने कानों को हमने महफूज कर लिया। अब इसके साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि जो पानी हम पीते हैं, जैसे कोकोनट वाटर की बात की थी आपने कि ये मौसम गर्मा का बेहतरीन ड्रिंक है, तो इसके साथ ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं, तो वो क्या डेली बेसिस पर, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर कोकोनट वाटर इंटेक कर
1: वो तो
0: सकते
1: डिपेंड
0: हैं?
1: ऑन देयर कैसी कंडीशन है उन्हों के लिए, वो अलग मैटर है उनके लिए,
0: अच्छा
1: वो पी रहे नहीं पी रहे।
0: जी जी
1: यहाँ हम लू की बात कर रहे हैं,
0: जी
1: लू के लिए ट्रीटमेंट है वो।
0: अच्छा,
1: कोकोनट वाटर तो फिर आप रोजाना भी आपकी मर्जी ले सकते हैं, तो
0: हाँ
1: वो
0: मतलब
1: डिपेंड
0: जैसा,
1: ऑन
0: हाँ
1: लाइक
0: जी
1: चॉइस अपनी,
0: बिल्कुल,
1: आपको क्या लेना है।
0: और उनका जो ग्लूकोस मॉनिटरिंग
1: हाँ
0: रहेगी
1: हाँ
0: उसके हिसाब से
1: तो बेटर
0: वो।
1: एडवाइस है कि लेना ही चाहिए, अच्छा रहता है वो।
0: अच्छा, और इसके अलावा और कौन सी ड्रिंक ले सकते हैं?
1: यही नेचुरल चार पांच ड्रिंक जो बोला हम, बेसिकली हीट का ऐसा है, 2 मिनट
0: जी
1: में सब साइन सिम्टम्स अलामतें सब हो जाती है। हमको सामाइन को हर चीज़ों से अवेयर करना है, हमारे
0: हाँ
1: प्रोग्राम का मकसद ये होता है
0: बिल्कुल,
1: कि सामाइन ने कुछ हमसे सीख कर जाना चाहिए,
0: सही कहा
1: वरना
0: आपने।
1: आपको तो यूट्यूब पे सर्च करे तो आपको कई चीज़ें मिल जाती है, वो आधे अधूरे डॉक्टर बन, सब डॉक्टर्स
0: जी
1: बन गए,
0: जी
1: आपको सब कुछ। आकाशवाणी के इसमें हमारा मकसद ये होना चाहिए कि आप कुछ
0: इसके
1: सीख कर
0: जरिए
1: जाइए,
0: जी, हाँ
1: हमको टीआरपी का इसका नहीं, हम सिखाने के लिए बैठे, आपको कुछ ना
0: बहुत
1: कुछ आना
0: अच्छा,
1: चाहिए।
0: बहुत अच्छा ख्याल है, ठीक ख्याल है आपका, कि हम मौसम गर्मा के ताल्लुक से सामाइन को जितना हो सके मालूमात पहुंचाए और एहतियाती तदाबीर बताए कि
1: जी
0: वो किस तरह अपने आप को महफूज रख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मौसम गर्मा का भी लुत्फ उठा सकते हैं।
1: जी
0: अब यहाँ पे बात कर सकते हैं हम कि जो मौसम गर्मा में हम देखते हैं कि जो खाने का हमारे पास रिवाज होता है, तो ज़्यादातर जो हमारी नौजवान नस्ल है या फिर न्यू जनरेशन्स है, तो वो स्पाइसी खानों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है। तो आप क्या मशवरा देंगे, कैसे खा सकते हैं हम खाना?
1: ऑयली चीज़ें, जितनी भी ऑयली है, एक्सेसिव ऑयली,
0: जी
1: तो वो तो सब अवॉइड करना है,
0: सभी को,
1: अवॉइड करना है। और रात के खाने को तो बर्खास्त ही करना है, रात के खाने को बर्खास्त करना है। रात का खाना आप एकदम लाइट लीजिए, अगर सही
0: जैसे
1: जीना है, लेकिन
0: हाँ
1: हमारे यहाँ की दावतें रातों में होती है,
0: बिल्कुल, और वो भी
1: वो
0: लेट नाइट,
1: आधी
0: हाँ
1: बीमारियों की बुनियाद वही है।
0: अच्छा
1: तो आधी बीमारियाँ उसी से हो रही है कि रात का खाना, वो भी कब खा रहे, 2 बजे रात में।
0: हाँ
1: और
0: उतना तो
1: उसमें
0: टाइम
1: हर
0: होता है
1: शादी में से एक बंदा गैसेस का है, अटैक बोलकर 2 लाख रुपए घर से बर्बाद करता है, एडमिट होके 2 4 दिन, फिर उसमें 2 बजे रात को खाना खाए,
0: जी,
1: बिरयानी खाए, 5 टाइप के खाने खाए, वो डकारे इतनी लेते हैं, फिर वो अटैक बोलकर वहाँ एडमिट हो जाते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन में। आप एवरी वन डॉक्टर इज़ नॉट रहम दिल, कमर्शियल तो है ही, तो बोलते साहब 2 3 दिन तो एडमिट हो जाइए। अब उसमें
0: सही
1: 100% मालूम है कि ही इज़ गैस्टाइटिस, गैसेस का प्रॉब्लम है, एडमिट होना है उसको। अब हमारी दावत हमारे सर पे आ गई, फिर कहाँ से ला रहे, इधर से ला रहे, उधर से ला रहे। तो अवॉइड कीजिए, आपको फॉर्मेलिटी करना है, शादी में जा रहे हैं, तो आप ऐसा बोलिए मैंने खा लिया हूँ, थोड़ा ले लिया। नफ्स को कंट्रोल करिए, यहाँ नफ्स को कंट्रोल का मादा है, नफ्स को कंट्रोल शैतान होने नहीं देता है, तो इसलिए आपको खाने का अवॉइड। दूसरा, आप दिन में कितना भी खाइए, 11 बजे से आप स्टार्ट हो जाइए, 5 6 7 बजे तक आप 6 बार खाना खाइए, आपको जितना कैपेसिटी खाइए। रात का खाना सोने से 4 घंटे पहले बंद कर दीजिए, अब देखिए आपका आधी बीमारियों का यही खत्म हो जाएगा। आप खाना खाकर सो रहे हैं, स्टमक में लेके सो रहे हैं, तो आधी बीमारी वहीं से शुरू हो रही है।
0: अच्छा, मतलब खाने से पहले आपको नींद का जो
1: नींद से
0: मुकर्रर
1: पहले,
0: वक्त है
1: हाँ,
0: आपका,
1: आप 11 बजे सो रहे हैं तो
0: हाँ
1: 8 बजे से खाने का बर्खास्त करना है, आपको नहीं खाना है कुछ भी। ये एक तकवे की बात बोल रहा हूँ मैं, ये
0: जी जी
1: तकवा, जिसमें तकवा है वही कर सकते हैं, एवरीवन सभी नहीं कर सकते।
0: लेकिन एक अच्छा रुझान ये भी देखने में आ रहा है कि आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर, हेल्थ जो अवेयरनेस आ रही है, तो वो बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं,
1: अच्छी
0: इन
1: बात है, वो
0: चीज़ों का भी
1: बहुत
0: ख्याल रख
1: अच्छी
0: रहे
1: बात है।
0: हैं कि खाने में एहतियात की जाए और
1: हाँ
0: वक्त से
1: हाँ
0: पहले मगरिब के वक्त, या मतलब 6 7 बजे
1: जी,
0: अपना
1: बेशक
0: डिनर कर ले वो कंप्लीट। तो अब ये जैसे सब्जी का जो हम शरबत
1: हरी
0: बनाते
1: सब्जियाँ,
0: हैं,
1: और हरी
0: जी
1: सब्जियाँ भी लेना है ये समर में, हीट स्ट्रोक से बचना है, हरी सब्जियाँ। सब्जी का आप बोल रहे हैं, वो भी
0: जी
1: एक
0: सब,
1: बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप गर्मियों में फालूदे में डालते हैं हम लोग सब्जियाँ को,
0: लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वो कब्ज की शिकायत करते हैं।
1: वो साइकोलॉजिकली किसको क्या हो रहा है, सबके लिए वो नहीं
0: जी
1: है,
0: जी
1: जिसको हो रहा है वो नहीं चल रहा है मन, अब
0: वो छोड़ सकते हैं,
1: हाँ
0: लेकिन
1: वो
0: जिनको बन रहा है, जो इस्तेमाल कर रहे
1: मैक्सिमम
0: हैं,
1: कंप्लेंट नहीं है सब्जी में,
0: जी
1: सब्जी की कंप्लेंट नहीं है। आप कोई भी चीजों में डालकर
0: हाँ, अगर आप हाँ दूध में डालकर पी रहे तो
1: कॉम्बिनेशन सही नहीं ले रहे तो उसमें
0: बिल्कुल सही कहा।

0: टू ऑब्जर्व फर्स्ट कॉम्बिनेशन कि हम
1: हाँ
0: किस चीज में क्या ले रहे हैं।
1: जी, तो अगर आप सादे पानी में लेते हैं तो कोई मसला नहीं
0: सादे पानी में
1: होगा।
0: लीजिए, शरबत में लीजिए,
1: हाँ
0: लेमन शरबत में लीजिए। अब
1: जी
0: वो आइसक्रीम आप कहाँ के ला रहे हैं, कौन सी कंपनी के ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं,
1: जी जी
0: डुप्लीकेट ला रहे हैं, अच्छे ला रहे हैं, किस चीज़ के, क्या केमिकल्स है। आप उसमें भी फालूदा बना के सब्जी में वो आइसक्रीम के साथ सब्जी ले रहे हैं, क्या पता क्या हो रहा है। सब दुनिया की साइंस अभी भी 30% अननोन है, वरना हर चीज़ का इलाज हो जाता, निकल जाता। और कुछ चीज़ें हो रही भी तो होने नहीं देते कुछ सुपीरियर अथॉरिटीज, क्योंकि दे हैव टू सेल द ऑल द मेडिसिन एंड सब चीज़ें।
1: क्योंकि ये भी अब एक इंडस्ट्री बन चुकी है।
0: सब अर्निंग मेथड से है। हम लोग तो
1: हाँ
0: कठपुतली, हमारा हम तो डेवलपिंग कंट्री से है,
1: जी
0: ये सब बड़े ऊंचे लेवल की चीज़ें हैं, सब ये चलते हैं इसमें। लेकिन हम जहाँ तक हो सकता है, पुराने ज़माने में जीने से बहुत फ़ायदा है, पुराने कल्चर्स में, पुराने मॉडल्स में आप फ़ायदा लो नई चीज़ों का।
1: हाँ
0: खाने पीने में वही चीज़ें रखिए आप,
1: और सादगी उसमें
0: सादगी
1: बरकरार
0: में
1: रखे और
0: आप
1: हेल्दी चीजें
0: हेल्दी। अब
1: खाए।
0: मेरा एक दोस्त के यहाँ जितनी फैमिली मेंबर है 5-6 का, हमारे यहाँ 5 किलो अगर ऑयल लग रहा तो उनके यहाँ 15 किलो लग रहा है, ये कैसे हो रहा है।
1: हाँ
0: ऑयल आप मंथली 15 kg यूज़ कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली ब्लॉकेज तो होना ही
1: बिल्कुल
0: है,
1: बढ़ेगा ही
0: आर्टरीज
1: बढ़ेगा।
0: ब्लॉक होना है
1: हाँ
0: आपको, अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हर घर में हो रहा है। भी तो तेल इतना क्या है, ज़रूरत नहीं है, जुबान को आदत हो गई, जुबान को तेल,
1: जायका
0: जायका ज़रूरी है
1: जी
0: टेस्ट के, तो तेल उससे भी, वो भी तेल एहतियात से। अब
1: इस्तेमाल
0: वही
1: करना
0: तेल लेके आप
1: चाहिए।
0: सन स्ट्रोक में इसमें जा रहे हैं, लू लगने के माहौल में,
1: हाँ
0: आपको डका रहा है तेल वापस आता। कई पेशेंट्स
1: सही
0: ओमिट के
1: कह रहे
0: जरिए से
1: हैं।
0: तेल, कितने पेशेंट्स ओमिट करते हैं बाहर, तो सारी वही चीज़ें निकलती है उनके ओमिटिंग में, कि ये सब गैर ज़रूरी चीज़ें जो समर नहीं एक्सेप्ट करता वो खाए हुए रहते हो सब,
1: ये बिल्कुल सही बात कही
0: वो भी
1: आपने
0: इम्बेलेंस
1: कि
0: हो जाता बॉडी में उसमें।
1: मौसम के हिसाब से देखकर हमको गिजाओं
0: हाँ
1: का इंतखाब करना चाहिए।
0: फ्रूट्स भी, मौसमी फ्रूट्स जो है अल्लाह ने दिए हमको, हर मौसम में तोहफा दिए है हर फ्रूट का, वो तो खाना ही खाना चाहिए, हर फ्रूट हर मौसम का खाना चाहिए।
1: तो जिस तरह डॉक्टर्स हमेशा मशवरा देते हैं, हमको डॉक्टर साहब यही मशवरा दे रहे हैं कि सब्जियों और फलों का, खासकर जो सीजनल होते हैं, मौसम के जो सब्जियां और फल होते हैं, उनका उनकी जो मेदार है वो अपनी प्लेट में बढ़ा दीजिए आप।
0: बेशक
1: वो ज़्यादा रखने की वजह से आप कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं।
0: बेशक
1: और सबसे अहम चीज़ डॉक्टर साहब ने बताई कि आप जो खाना खा रहे हैं, खासकर गर्मी हो या फिर कोई मौसम हो, लेकिन
0: हाँ
1: गर्मियों में तो खास इस बात का एहतियात कीजिए कि सोने से बहुत पहले, 4 घंटे पहले आप अपना खाना खत्म कर दीजिए। उसके बाद खाना मत
0: बेशक
1: खाइए, इस तरह रहिए जैसे कि आपने रोज़ा रख लिया
0: हाँ
1: हो।
0: रोजे के पहले पहले आपको आदत होने तक तकलीफ आएगी, वो
1: हाँ
0: 1 बजे 2 बजे रात को आप
1: भूख लग
0: वापस से
1: सकती
0: भूख
1: है
0: लग
1: आपको,
0: जाएंगी,
1: जी
0: सोए नहीं सकेंगे।
1: क्रेविंग
0: लेकिन
1: होगी आपको।
0: ये रोजे
1: हाँ
0: का आप बोल रहे हैं तो वहाँ रोजा समझ लीजिए, अभी तो नहीं होगा 8 बजे,
1: जी,
0: 8, 9, 10, 11 बजे सोना
1: हाँ
0: है तब तो नहीं एहसास होगा।
1: मिडनाइट में हो
0: मिड
1: सकता
0: नाइट में
1: है।
0: आप करवटे बदलेंगे, अब कैसे करना, फिर मुझे
1: हाँ
0: याद करेंगे कैसा बदमाश डॉक्टर, इसने भी आदत दी। तो वो वहाँ पर नहीं है,
1: जी
0: आपको आपके सेल्फ के लिए हम एडवाइस दे रहे हैं,
1: जी
0: आपको खुद बचना है वहाँ पर।
1: ये कहा जाता है ना सर कि हम तू दोस्त है तो नसीहत ना कर खुदा के लिए। तो नसीहतें बहुत बुरी लगती है हम लोगों को,
0: हाँ
1: लेकिन ये नसीहतें ही दरअसल हम लोगों के लिए गाइडेंस होती
0: बेशक
1: है,
0: बेशक
1: हमारे लिए एक ऐसा रास्ता होता है जिस पर चलकर हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ सामाइन आपको अच्छा डॉक्टर ही कहेंगे, आपके बारे में बहुत अच्छी राय कायम करेंगे इंशाल्लाह, कि आप उनको एक दोस्त की तरह मशवरे दे रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को महफूज रखे, न सिर्फ लू लगने से और गर्मी से, बल्कि जो हमारे आसपास जो माहौल बन रहा है कि पैसों के लिए हो या अपने मफादात के लिए हो, जो एक कमर्शियल ज़हनियत बन रही है, तो उससे बचाव के लिए भी वो आपको तदाबीर बता रहे हैं कि कैसे सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और कैसे वो अपनी डॉक्टर बिरादरी को भी मशवरा दे रहे हैं कि अगर आपके पास, आपको
0: परमानेंट
1: जो
0: पेशेंट,
1: फैमिली डॉक्टर
0: चलिए
1: समझता है वो अगर आपके पास आए, बस छोटी मोटी उसको कोई परेशानी है, सर दर्द है, पेट दर्द है, तो आप मुफ्त में उसको दवा लिख कर दे दीजिए, वो हमेशा बना रहेगा आपके साथ और
0: बेशक
1: वो अपनी जान से नहीं खेलेगा।
0: हाँ
1: वो ये नहीं सोचेगा कि अरे बस पेट दर्द के लिए और सर दर्द के लिए भी मुझे 200 रुपये या 500 रुपये
0: हाँ
1: फीस अदा करनी
0: बेशक
1: है। तो यहाँ पर सही एक तरह से देखा जाए तो पहली बार हम आपसे इस बात को सुन रहे हैं कि मतलब वहाँ डॉक्टर्स की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है,
0: कुर्बानी चाहिए उसमें
1: कुर्बानी,
0: सबकी, हाँ
1: बिल्कुल
0: कुर्बानी
1: सही
0: चाहिए।
1: लफ्ज इस्तेमाल किया आपने कि वो थोड़ी सी अगर कुर्बानी देते हैं तो कई इंसानी जानों की एक हिफाजत हो सकती
0: बेशक
1: है,
0: बेशक
1: उनकी
0: बेशक
1: बेहतरी हो सकती है,
0: हाँ
1: और मरीजों को भी एक एतमाद आ जाता है कि डॉक्टर साहब हमको समझ सकते हैं,
0: हाँ
1: एक छोटी सी बीमारी के लिए वो फ्री में हमको दवा लिख कर दे सकते हैं, तो अब जो भी होगा हम उनके पास जाएंगे।
0: बेशक
1: तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा रिश्ता भी डेवलप होता है, सिर्फ एक कमर्शियल रिश्ता नहीं रह जाता है कि एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, बल्कि एक हमदर्द, इंसानी हमदर्दी होती है,
0: जी
1: और एक पेशेंट भी एक ज़रूरत के तहत अपनी जो भी उसकी तकलीफ होती है वो खुलकर बयान कर

0: सकता है
1: जी जी
0: कि मेरे पास पैसों का मसला है या फिर जो भी उसकी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं। और हमारे पास जो तरजीह होती है, यानी कि जो हम प्रेफरेंस देते हैं, वो सेहत को बहुत कम लो लेवल पर देखते हैं हम।
1: जी
0: हमारे पास खाना, कपड़े, जेवर, माशरे में जो हम पर दबाव होता है, हम पर मतलब जो सोसाइटी डिमांड करती है, तो उन जाहिरी चीज़ों को बहुत देखते हैं हम लोग। और सेहत को हम मतलब हल्के से ले लेते हैं कि भाई कुछ खा लिया तो क्या हो गया, और हमको बीमारी हो गई है, तकलीफ हो गई है, तो हम मेडिकल पर जाकर कुछ ले लेंगे दवाएं।
1: जी
0: उसके लिए डॉक्टर के पास जाओ, लाइन लगाओ, फिर उनको पैसे फीस अदा करो, ये सब क्यों करें हम? तो लेकिन ये दरअसल एक उल्टा चक्कर।
1: आपका फैमिली डॉक्टर आपको जानता है, आपको बीमारी गैसेस है, अल्सर
0: हाँ
1: है,
0: जी,
1: तो
0: पूरी
1: आप जब अगली बार
0: फैम
1: कोई पेन किलर मांग रहे हैं तो वो सोच कर देंगे आपको कि
0: पूरा वो
1: वो
0: बैकग्राउंड याद
1: कि
0: रहेगा
1: कौन
0: उनको।
1: सा कॉन्ट्राइंडिकेट करता है, कौन सा साइड इफेक्ट करता है आपको, तो वो उस मुताबिक देंगे लिखकर। तो
0: जी
1: आपके डॉक्टर का भी माइंड बनना चाहिए वैसा कि नहीं, ये इन्होंने फ़ोन पे मुझे मांगे, ये दर्द हो रहा तो मैं इनको ये टैबलेट मैसेज कर दो।
0: हाँ
1: अगर
0: सही
1: आपके पेशेंट में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप उतने मैसेज कर दीजिए। सेल्फ मेडिकेशन फार्मासिस्ट के यहाँ कभी कभी क्या होता है
0: जी,
1: कि वहाँ सेल्समैन बैठे रहते हैं,
0: हाँ कभी कभी ये हो
1: फार्मासिस्ट नहीं
0: सकता
1: बैठते
0: है
1: हैं।
0: जी।
1: तो सेल्समैन आपको पेन किलर दे रहा है, वो क्या जानते हैं, वो इंटर भी पास नहीं है, 10th भी पास, SSC पास नहीं है। आप उनसे मेडिसिन ले रहे हैं, आपको अशरफुल मखलूक बनाया अल्लाह ने, इतनी बड़ी रूह है अल्लाह की आप, तो आप अपने आप में सोचिए कि आप किससे दवाई ले रहे हैं, वो मेन अपने गहराई से अपने अंदर सोचिए।
0: सही
1: बस
0: कहा,
1: ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, उसमें
0: बहुत
1: लू के
0: बहुत
1: बहाने
0: मैं
1: से।
0: समझती हूँ कि सामाइन बहुत गौर से आपकी बातें सुन रहे होंगे,
1: जी
0: और इंशाल्लाह वो ज़रूर अमल भी करेंगे और अपनी जानों की बहुत हिफाजत करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे।
1: आपका फैमिली डॉक्टर आपको जानता है आपको क्या बीमारी है, क्या सूट होता है, तो उसी से लीजिए आप जो भी है। तो पैसे क्या है, कभी कभार वो भी निकाले, जो भी फीस का है मैटर सब होता है, लेकिन कैसा है, आप जब जा रहे हैं तो आपका फार्मासिस्ट भी अगर वहाँ नहीं है तो वो सेल्समैन देगा ना आपको मेडिसिन,
0: जी
1: सेल्समैन को साइड इफेक्ट क्या पता है उसके अंदर, तो
0: हाँ,
1: वो
0: हमने
1: रिक्वेस्ट
0: कई
1: है हमारा।
0: केसेस ऐसे आपने तो
1: हाँ
0: बहुत देखे होंगे, और हम भी
1: हाँ
0: अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि गलत दवाओं
1: नहीं,
0: के असरात
1: हिडन
0: हो जाते
1: केसेस
0: हैं।
1: 15% हिडन केसेस खराब होने वाली, यही सब है सेल्फ मेडिकेशन।
0: जी
1: सेल्फ मेडिकेशन, अननेसेसरी इंजेक्शन, अननेसेसरी ग्लूकोज, 15% मेडिकल में फील्ड में ये सब चीज़ें पेशेंट्स को ख़राब कर रही, और कई मौतें भी हो रही इसके अंदर डेली, ऐसा समझ लो पूरे इंडिया में कई जगह मौतें सेल्फ मेडिकेशन की है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसके अंदर।
0: जी सामाइन, डॉक्टर साहब का तो यही मशवरा है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, और जैसा आज का हमारा मौजू है मौसम गर्मा और एहतियाती तदाबीर, तो इस मौजू के तहत भी डॉक्टर साहब का यही कहना है कि लू भी अगर आपको लग रही है, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में किसी को लग जाए, आस पड़ोस में किसी को लग जाए, तो आप उन्हें कोई दवाएं ना दें, सिर्फ जितना हो सकता है उनको घर में फर्स्ट एड देने की कोशिश करें, तिब्बी इमदाद पहुंचाएं उनको, इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें और फौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर जैसे कि कई महलों में हम देखते हैं, मोहल्लों में, कि दोपहर में डॉक्टर्स नहीं होते
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: तो उस वक्त तक के लिए आप उनको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप उनको ठंडी जगह पर रखेंगे,
1: हाँ
0: स्पंजिंग
1: हो ही
0: करेंगे
1: जाते हैं उसमें,
0: और
1: इतना ये
0: पानी
1: नहीं
0: उनको
1: है,
0: पिलाएंगे,
1: रेयरेस्ट है इमरजेंसी।
0: जी कोकोनट वाटर देंगे, फिर जो भी ट्रीटमेंट उनका होगा फिर डॉक्टर से बताइए
1: जी
0: उनको,
1: उसमें
0: फिर
1: आप
0: वो
1: टैबलेट
0: शुरू
1: पेन
0: हो
1: किलर
0: जाएगा।
1: ये आप दे रहे हैं, उसमें एनाल्जेसिक,
0: जी
1: एंटीपायरेटिक यानी
0: हाँ
1: फीवर को कम करने वाली दवाई,
0: जी जी
1: एंटीपायरेटिक बोलते हैं,
0: हाँ
1: उसका रोल ही नहीं है उसके अंदर, उसमें लू
0: अच्छा
1: लगने में। अब भूल रहे थे हम, बात जहन में
0: हाँ
1: आ गई
0: हाँ
1: है,
0: बताइए ज़रूर।
1: पैरासिटामॉल वगैरह
0: हाँ
1: एंटीपायरेटिक है,
0: हाँ
1: तो वो आप रोल ही नहीं है वहाँ पर उसका।
0: हाँ तो ये बहुत आपने काम का मुफीद पॉइंट
1: हाँ
0: बताया है कि अगर मरीज को, जिसको भी लू लग रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जा रहा है और आप फौरन से डर के मारे उसको पैरासीटामोल खिला रहे हैं,
1: हाँ
0: ये सोच करके इसको बुखार आ गया है, ये दवा से बुखार कम हो
1: अगर कंफर्म
0: जाएगा,
1: है लू है तो रोल
0: हाँ
1: नहीं है वहाँ पर उसका,
0: तो वो दवा उस पर असर भी नहीं करेगी ना।
1: होता ही नहीं उसमें ऐसे कुछ।
0: हाँ
1: आपको पहले टेम्परेचर मेंटेन करना है ब्रेन
0: जी
1: से,
0: जी
1: कोल्ड स्पंजिंग, आइस वगैरह, ये सब चीज़ें
0: हाँ
1: जो घर फार्मूलेस है,
0: जी
1: उसके बाद अगर मतली है ये सब है तो डॉक्टर रुजू हो रहे हैं, डॉक्टर से डॉक्टर सब कर लेंगे।
0: इंशाल्लाह
1: डॉक्टर को महसूस हुआ देना है पैरासीटामॉल, देना है दवाइयाँ, सब दे देंगे डॉक्टर्स जो भी है।
0: हाँ,
1: तो
0: तो ये फैसला डॉक्टर को कर दे दीजिए
1: हाँ डॉक्टर
0: कि उन्हें
1: करेंगे।
0: क्या दवाएं देना है और कौन सी दवाएं देना है। हमको घर में दवाएं नहीं देना है,
1: जी
0: हमको सिर्फ और सिर्फ तिब्बी इमदाद पहुंचाना है, जैसे पानी दे सकते हैं आप,
1: बेशक
0: कोकोनट वाटर दे सकते हैं, सब्जी
1: हमारे बस में
0: का,
1: जो है वो करना है हमको।
0: जी हाँ
1: जी
0: जो आप कर सकते हैं ये चीज़ें हैं, और बाकी की चीज़ें सब डॉक्टर पर छोड़ दीजिए, वो इंशाल्लाह देख लेंगे। और दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर नोट करते हैं कि जब गर्मी लगती है तो मरीज़ बहुत परेशान हो जाते हैं, और जैसे इब्तिदा में आपने भी बताया कि अगर लू बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप पर लग जाती
1: है,
0: है,
1: बहुत कम है
0: हाँ, तो जान
1: जी,
0: का भी खतरा हो सकता
1: होता
0: है।
1: है 2 मिनट में जान चली जाती है उसमें,
0: ये
1: इतना भी
0: तो
1: खतरनाक
0: बहुत खतरनाक बात आपने बताई।

0: बैड लक है तकरीबन जो भी है, तो
1: तो वो
0: बहुत
1: कौन
0: ही
1: से हालात होते हैं, वो
0: बस
1: कौन सी
0: से
1: सिचुएशंस होती है?
0: कंफ्यूजन हो जाता है एकदम, मैं क्या कर रहा हूँ समझता नहीं कुछ, उसमें बेहोश टाइप हो जाते हैं
1: कोमा
0: आम,
1: में भी जा सकते हैं?
0: कोमा बोल अनकॉन्शियस बोल सकते हैं उसको,
1: जी,
0: कोमा तो नहीं
1: बेहोश हो जाते
0: अनकॉन्शियस,
1: हैं।
0: हाँ
1: जी हाँ, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन
0: जी
1: अभी आपने जो जान जाने की बात की है, तो वो
0: होते हैं ना
1: कैसे होता
0: बहुत,
1: है?
0: वो सब ऑन द स्पॉट उन्हों को जो फर्स्ट एड है वो नहीं मिलने से,
1: अच्छा,
0: खेत पे काम कर रहे
1: हाँ
0: खेत
1: हाँ
0: वाले ज़्यादा इसमें बेचारे, खेत का हमारे राइदो बंधु
1: मजदूर।
0: काश्तकार,
1: जी,
0: इसमें काश्तकार भी मजदूर के अलावा उनके
1: हाँ,
0: ओनर भी खेत के भी, वो भी खेत पे
1: किसान। जी
0: किसान
1: हाँ,
0: करते हैं दिन भर,
1: काश्तकारी जो करते हैं,
0: हाँ
1: जो हमारे
0: तो
1: लिए अनाज उगाते
0: हाँ
1: हैं
0: वो
1: बेचारे, तो
0: भी
1: वो
0: उससे ज़्यादा
1: अपनी
0: इफेक्ट में होता है
1: जिंदगी
0: उनको,
1: को।
0: लाने के लिए कहाँ उतने
1: हाँ
0: हैं ही नहीं
1: जी,
0: फैसिलिटीज,
1: ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं होती
0: हाँ
1: है
0: तो
1: वहाँ, करीब
0: उन
1: डॉक्टर नहीं होते
0: तो
1: हैं,
0: वही मेन रिस्क रहता है, तो आपको जल्दी नहीं डॉक्टर्स को दिखाने में तो वहीं पर ही जान जाने का
1: तो ये
0: खतरा
1: सब
0: है।
1: कुछ बड़े पैमाने पर होना चाहिए। मतलब ये हुकूमती इकदामात भी हो सकते हैं
0: जी
1: कि
0: जी
1: भाई
0: जी
1: हर खेत के पास एक डिस्पेंसरी हो, या फिर डॉक्टर्स
0: विलेजेस में,
1: हो,
0: हर विलेजेस में
1: विलेजेस में हो।
0: तकरीबन
1: जी,
0: जैसा भी जहाँ है, या फिर
1: हाँ
0: कुछ इमरजेंसी नंबर चाहिए
1: जी,
0: ऐसा हुआ तो
1: हेल्पलाइन। हाँ,
0: 15-10 मिनट्स में भी कोई भी पहुँच रहे कहीं भी, अब किंग कोबरा सांप ने
1: काट
0: काट
1: लिया
0: लिया
1: किसी
0: तो
1: को।
0: उससे भी कितनी मौतें हो रही विलेजेस
1: हाँ
0: में,
1: जी, सही
0: उन्हों
1: कहा
0: को ऑटो नहीं मिलता है, कितने
1: जी।
0: पेशेंट्स है कैसे कैसे लेकर जाते, वो हॉस्पिटल ले जाने तक एक्सपायर हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं उसके अंदर।
1: जी, तो ये हम अखबारात में भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं कि लू लगने की वजह से या फिर
0: हाँ
1: हीट स्ट्रोक से
0: हाँ
1: कई जानें चली गई, दो लोग की मौत हो गई या फिर दो अफराद हलाक हो गए,
0: हाँ
1: तो इस तरह
0: हाँ
1: की ये खबरें तो हम पढ़ते रहते
0: तो यही
1: हैं।
0: है, थोड़ा लेट हो
1: तो
0: जाना ट्रीटमेंट में सब
1: जी,
0: इसमें,
1: तो ये फर्स्ट एड की अहमियत भी अपनी जगह
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ
1: है,
0: बहुत है,
1: और ये इमदाद देना ज़रूर है। अगर खुदा न खास्ता कहीं आपको कोई पेशेंट नज़र आ जाए आसपास या रोड पर, तो कोशिश कीजिए कि उसको फर्स्ट एड
0: हाँ
1: पहुंचाए,
0: मदद करना
1: हमदर्दी
0: चाहिए,
1: तरह
0: हाँ
1: जो हमदर्दी होगी आपकी। तो और आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ है, अब्दुल साजिद शेख साहब, तो ये हमको फर्स्ट एड की अहमियत भी बता रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस हमारे सामाइन में आई होगी इस बात को लेकर, वो पहले से भी जानते ज़रूर होंगे,
0: जी
1: लेकिन एक तरह से रिवाइज भी हो रहा है
0: बेशक,
1: कि कैसे उनको इमदाद पहुँचानी चाहिए, लोगों को, खुद को, अपने घर वालों को। तो इस मौसम को हम ये ना समझे कि एक बहुत खतरनाक मौसम है, बल्कि ये मौसम को समझे कि एहतियात के लिए, हम एहतियात अगर करते हैं तो इसको भी बहुत इंजॉय कर सकते
0: बेशक
1: हैं,
0: जी
1: और लोगों तक इस बारे में हम मालूमात पहुंचा सकते हैं कि कैसे अपने आप को बचाए, कैसे अपने आसपास के लोगों को बचाए। यहां तक कि अगर आप रोड पर भी या फिर आपके आसपास किसी मरीज को देखते हैं, तो उसको फौरन पहली फर्स्ट एड पहुंचाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर वो पहुंच जाती है उसको फर्स्ट एड, तो कम से कम उसकी जान का खतरा तो नहीं रहता है।
0: जी
1: और ये जान का खतरा भी उस वक्त बनता है जब बहुत ज्यादा हीट उसकी बॉडी में जमा हो जाए और उसका जहन ये ना तय कर सके कि अब बचाव का क्या रास्ता है, तो वो बेहोश हो सकता है, और उस बेहोशी में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको फर्स्ट एड में हम
0: जी जी
1: पहुंचाकर उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, और आप क्या कहना चाहेंगे?
0: अभी तो सब इतना ही है, अभी उसमें जो
1: जी
0: अब
1: जी
0: ज्यादा नसीहत भी बहुत हो जाएंगी आपके सामने
1: नहीं, बहुत
0: इनको
1: शुक्रिया सर, आपके यहाँ आने के लिए बेहद
0: जी
1: मशहूर है हम आपके, और आपने ऐसी ऐसी बातें हमें बताई जो काफ़ी फायदेमंद रही, खासकर जो प्याज वाला नुस्खा था,
0: जी
1: और आपने प्याज का बताया और एक इमली का बताया। देखिए कि इमली का
0: इमली
1: जो
0: प्याज है,
1: खट्टा
0: एलोवेरा
1: होता
0: है,
1: है, हाँ एलोवेरा है, तो वो
0: हाँ
1: इमली का जो खट्टा होता
0: और
1: है उसमें
0: मेडिसिन का
1: क्या
0: कोई रोल नहीं
1: हम
0: है इसमें भी
1: जी
0: जी,
1: नमक और शक्कर मिलाकर दे सकते हैं उस इमली के
0: नमक
1: खट्टे
0: का
1: में,
0: ऐसा है कि बीपी का पेशेंट अगर है तो शूट हो जाएगा बीपी,
1: तो उसे नमक ना दें?
0: बीपी चेक करने के बाद के
1: हाँ
0: मसले है सब वो,
1: जी,
0: तो इसलिए
1: तो
0: वो लेमन
1: इमरजेंसी
0: से
1: में
0: आपको, लेमन में इलेक्ट्रोलाइट
1: हाँ
0: बैलेंस हो जाएगा,
1: जी
0: एलोवेरा
1: जी
0: में होगा, इमली में होगा,
1: इमली,
0: अब
1: बस
0: हमको
1: उसको पानी
0: मालूम ही नहीं,
1: मिलाकर
0: ओ
1: दे
0: आर एस का
1: दें।
0: बोलते बोलते आप भूल जा रहे हैं हम लोग, अगर
1: जी
0: बीपी डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है,
1: हाँ
0: वो पेशेंट अगर आप लू लग गई बोल के ओ आर
1: हाँ
0: एस डाल दे रहे हैं, आप ओ आर एस पी रहे तो
1: तो
0: फिर
1: उसकी
0: बीपी
1: शुगर
0: शूट
1: बढ़
0: हो जाएगा,
1: जाएगी, बिल्कुल हाँ,
0: बीपी शूट हो
1: बीपी भी
0: जाएगा,
1: शूट हो जाएगा
0: बीपी
1: उसका,
0: शूट हुआ
1: नमक
0: तो
1: होने
0: आपको
1: से।
0: पैरालिसिस का डर है, आपका दिमाग की नस
1: या अल्लाह रहम
0: सेरेब्रल पाल्सी
1: फरमाए।
0: कुछ हो,
1: हाँ,
0: तो बिना बीपी चेक करे भी आप ओ आर एस नहीं पी सकते
1: ये
0: हैं।
1: बहुत अच्छी बात आपने बताई, तो सामान्य इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, कि अगर पेशेंट बीपी का मरीज है
0: अब
1: या
0: वो द एज
1: शुगर का
0: ऑफ
1: मरीज
0: फिफ्टी
1: है,
0: सिक्सटी
1: ज्यादा उम्र का
0: हाँ
1: है, जैसे 40-50 साल के दरमियान है, आजकल तो यंग
0: सभी को आ
1: पर्सन्स
0: जा रहा
1: को
0: है
1: भी,
0: बीपी, लेकिन
1: हाँ
0: फिर भी ओल्ड
1: बीपी,
0: एज में
1: हाँ ओल्ड एज
0: यंग
1: में,
0: का बेयर हो जाएगा, बर्दाश्त
1: हाँ
0: कर लेंगे,
1: बर्दाश्त कर लेगा वो, उसकी
0: ये
1: बॉडी
0: बर्दाश्त नहीं करेंगे
1: बर्दाश्त
0: 60 के ऊपर,
1: करेगी।
0: आप
1: तो
0: ORS ले लिए शूट हो जाएगा बीपी।
1: जी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है सामाइन, इसको नोट कर लीजिए कि आपको हर पेशेंट को ओआरएस नहीं देना है,
0: ORS बीपी चेक
1: खासकर
0: करने के बाद आपको
1: हाँ हर पेशेंट को आप नहीं दे सकते हैं
0: ORS मींस नमक, नहीं तो ORS
1: नमक,
0: में भी फार्मूले अलग अलग
1: हाँ
0: है
1: हाँ नमक और
0: नमक।
1: शक्कर।

0: वाला जो पानी है हम अक्सर बनाकर दे देते हैं
1: हाँ
0: फौरन
1: नमक नहीं
0: से,
1: देना।
0: तो हमको बीपी के मरीजों के साथ तो ये बिल्कुल ही नहीं करना
1: हाँ बाकी
0: चाहिए।
1: सबको आप ब्लाइंडली दे सकते हैं, लेकिन
0: आप
1: ये
0: नॉर्मल
1: इसमें
0: लोगों को जरूर दे
1: हाँ
0: सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि ये बीपी का मरीज है तो उसे कभी भी लू लगने के मौके पर
1: हाँ
0: कभी उसको नमक वाला पानी मत दीजिए।
1: टिल द
0: और
1: बीपी चेकअप,
0: हाँ,
1: आप
0: जब
1: बीपी
0: तक कि
1: चेक जब
0: उसका
1: तक।
0: बीपी आप चेक ना कर ले।
1: हाँ
0: और शुगर के पेशेंट के बारे में क्या कहेंगे सर?
1: शुगर तो जो है सब नॉर्मल ही सब
0: नहीं
1: देते
0: मतलब
1: हैं,
0: उसको नमक शक्कर वाला पानी दे सकते हैं,
1: बीपी
0: और
1: नहीं है
0: ऐसे
1: तो, बीपी नहीं है
0: शुगर
1: तो
0: अगर उसको है तो भी ना
1: शुगर
0: दे।
1: में कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें शुगर नहीं डालना है, डायरेक्ट शुगर
0: अच्छा
1: उसमें लेमन ही चाहिए बेस्ट,
0: ओके,
1: इमली लेमन ऐसा
0: जितना
1: कुछ।
0: हो सकते आप सादा तौर पर
1: हाँ
0: बना के दे
1: हाँ
0: दीजिए, नमक और शक्कर से जब तक कि आप चेक न कर लें मरीज को अवॉइड ही
1: जी
0: कीजिए।
1: जी
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामाइन, हम डॉक्टर अब्दुल साजिद शेख साहब से बात कर रहे थे, और डॉक्टर साहब ने जैसे कि मैंने शुरू में आपको इब्तिदा में बताया था कि बहुत खुलूस और हमदर्दी रखते हैं अपने मरीजों के साथ, और मैं समझती हूँ आप भी इनसे गुफ्तगू समात फरमा रहे थे, तो अंदाज़ा आपने कायम किया होगा कि इन्होंने बहुत ही मुफीद मशवरे दिए हमको। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आकाशवाणी हैदराबाद नैरंग प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर डॉक्टर साहब को मधु करने का मौका मिला और उनसे गुफ्तगू का मौका मिला। समाइन, आपकी समाअत के लिए भी मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
2: डॉक्टर माइक सिलसिले के तहत इंटरव्यू आप समाप्त कर रहे थे। हमारे आज के माहिर डॉक्टर थे डॉक्टर अब्दुल साजिद शेख साहब, जो कि हमें मौसमी गर्मा के में गर्मा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर बहुत कुछ बातें हमें बता रहे थे इससे मुतालिक, और साथ में डॉक्टर गौसिया बानो साहिबा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू ले रही थी और बहुत ही मालूमाती सवाल इन्होंने पूछे हैं, और इस तरह से एक मालूमाती इंटरव्यू ये रहा है। तो हम अपने सामाइन से उम्मीद रखते हैं कि आपने आज के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा। तो अगर नहीं भी उठाया, आपने सुना है, तो ज़रूर मुस्तफ़ेद होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही मुफीद मशवरे दिए हैं डॉक्टर साहब ने हमें, जो कि ये हमारे लिए ये मशवरे वाकई काफ़ी कारामद और मुफीद साबित हो सकते हैं। तो चलिए सामाइन आगे बढ़ते हैं, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ रवा दवा है, गर्मी भी अपने बड़े बड़े शबाब पर है, तो आप कुछ ना कुछ गर्मी से बचाव के तदाबीर जो कि अभी आपने सुने उनमें से अख्तियार करें, और बड़े ही सुकून से और बड़े ही ठंडे अंदाज में हमारे प्रोग्राम की समाप्त करें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम के रुख को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ सुरीलापन कुछ मौसीकी हमारे प्रोग्राम में शामिल करते हैं, प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जाए के संग। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जाए के। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ पुराने नए हिंदी फिल्मी गीत, और आप सुरीले गीत सुनाएंगे और साथ में करेंगे इन गीतों से मुतालिक कुछ प्यार भरी बातें। तो लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रोग्राम का पहला रंगीन खूबसूरत मशहूर नगमा।

दोस्तों, आपने सुना प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा का ये पहला नगमा। आवाज़ें थी SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की, और फिल्म था दी जेंटलमैन। इस खूबसूरत गीत की समाप्त के बाद, यानी कि सुनने के बाद, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका अंदाज़ा कुछ कुछ करीब है मेरे टॉपिक के। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरती की, रूप की और ग्लैमर की। जी हाँ, तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे, हमारी यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, नगमे हैं, जिसमें खूबसूरती या हुस्न एक बड़ी माने रखता है, और इस पर कई नगमे लिखे गए हैं, कई गीत लिखे गए हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर भी हुए हैं, क्योंकि खूबसूरती होती ही ऐसी चीज़ है। कहा जाता है कि हुस्न का एक नुक्ता सब पर भारी होता है। तो चलिए, हुस्न की खूबसूरती के तस्करे अलग अलग अंदाज में किस तरह से आशिकों ने किए हैं, एक और बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना, बहुत ही रेट्रो टाइप का अंदाज हम आपको सुनाते हैं इस गीत के जरिए। लीजिए सुनिए।

हाय, क्या बात है! कितना खूबसूरत और कितना पुरसुकून अंदाज है तारीफ का! क्या बोल हैं, क्या म्यूजिक है! हर चीज की तारीफ जितनी की जाए उतना कम। वैसे तो तारीफ की ही बात चल रही है, खूबसूरती की बात चल रही है, हुस्न की बात चल रही है, तो आइए हुस्न का एक और खूबसूरत अंदाज, एक और निराला और एक अनोखा नया अंदाज हम आपको सुनाने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। तो लीजिए आनंद राज आनंद की आवाज में ये नया अंदाज आपकी समातों के हवाले करते हैं, सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। सुरीले गीतों का एक हसीन सफ़र चल रहा था और ये सफ़र अब आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इस सफ़र को यूं ही जारी रखें। लेकिन वादा करते हैं कि हमारे अगले प्रोग्राम में, फिर इस शो में, हम ज़रूर आपसे मिलेंगे एक बहुत ही प्यारे से सुरीले गीतों के सफ़र के साथ, सफ़र जोड़े हुए। तो चलिए, अभी प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन नारंग प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल हमारी आज की आखिरी पेशकश जो है वो है आज की शब का पैगाम, यानी कि पयाम-ए-शब।

माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। हर इंसान को जिंदगी में कभी न कभी किसी ख्वाहिश, किसी मोहब्बत या किसी मंजिल का इंतजार जरूर करना पड़ता है। असल अहमियत सिर्फ हासिल करने की नहीं, बल्कि अपने जज्बे की सच्चाई साबित करने की होती है। अगर नीयत खालिस हो और शौक सच्चा हो तो इंतजार भी इबादत बन जाती है।

ज़माइन, आपने सुना पयाम शब, यानी कि आज की शब की आखिरी पेशकश, तहरीर और पेशकश थी जनाब जैदी साहब की। तो दोस्तों, हर शब का कोई पैगाम होता है, हर वक्त का कोई अख्तिताम होता है, और हमारे भी प्रोग्राम के अख्तिताम का वक्त आ चुका है। और हम यही चाहते हैं कि हंसते मुस्कुराते हमारे आज के प्रोग्राम की को मुकम्मल करें। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप अपना भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी हैं। शदीद गर्मा के मौसम में आपको अपना ख्याल रखना है। गर्मा में जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करने की कोशिश करें। अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और हमारे अपनों की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनमोल हैं। इसी बात के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अब वक्त हो चुका है, अगली बज़्म में आपसे कुछ और ख़ास बातें लिए हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। रात के 11 बजने ही वाले हैं। अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।
1: भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन

0: किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Navaneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honour. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आज यहीं तक। फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त

0: उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus President said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: Aaj humne cyber security, maritime security aur counter-terrorism sahyog ko bhi aur majboot karne ka nirnay liya hai. Itna hi nahi, hum Indo-Pacific Ocean Initiative aur India-Middle East-Europe Economic Corridor jaise mahatvapurna pahalon se कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan yesterday. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi yesterday. He said that work is progressing towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce a smart border project equipped with drones, radars, modern cameras and other advanced technologies. The Home Minister said once this initiative begins, the work of the border security

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितना प्यारा है ये रात का समा, जब सोचने के लिए कुछ नहीं, बस खामोशी ही खामोशी। कंपेयर किया जाए तो दोपहर से थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है और दिल कुछ देर के लिए हर उलझन से आजाद महसूस कर रहा है।

ये वादा रहा फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में। गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन ने संगीत दिया। इन लफ्जों में एक अजीब से अपनेपन की भरी तसल्ली है, जैसे बरसों बाद भी कोई रिश्ता दिल में वैसा ही महफूज हो। रात की खामोशी में जब ये गीत बजता है तो बीते हुए लम्हे, पुरानी मुस्कुराहटें और अधूरी बातें सब धीरे धीरे याद आने लगती हैं।

बड़े दिलवाला फिल्म से आपने गाना सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहीं न जा आज, कहीं न जा, दिल के ये लम्हे फिर लौट कर कहाँ आएंगे। बस यूं ही पास बैठे रहो कि खामोशी भी आज कोई मीठा सा गीत लग रही है।

याराना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 यानी 90 जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ

एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। अहले दिल अक्सर अपने जज्बातों का शोर दुनिया को नहीं सुनाते, वो मुस्कुराहटों के पीछे तकलीफ छुपा लेते हैं और अपने हिस्से का दर्द खामोशी से सह लेते हैं। शायद इसी खामोशी में उनकी मोहब्बत की गहराई और दिल की मजबूती दिखाई देती है।

बंधन फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर

रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से आपने गाना सुना, किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है, बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ।

टावर हाउस फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा असद भोपाली ने और संगीत दिया रवि ने। दिले नादान गम से यूं न घबराना, जिंदगी की राहों में खुशी और उदासी दोनों साथ चलती हैं। कभी कोई याद दिल को बेचैन करती है तो कभी वही याद जीने का सहारा बन जाती है। दिल अगर सच्चा हो तो दर्द भी उसे और गहरा और खूबसूरत बना देता है।

एल परदेसी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। रात जब खामोश होती है तो दिल की दबी हुई बातें और भी साफ सुनाई देने लगती हैं। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें छेड़ दिया जाए तो नींद नहीं, सिर्फ बेचैनी लौटती है। कभी कभी तन्हाई ही इंसान की सबसे अच्छी हमसफर बन जाती है।

जरक खान फिल्म से आपने गाना सुना आशा भोसले की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस मोहिंदर ने। शाम की तन्हाइयां में तन्हाइयां हैं, ऐसे में तू आजा सनम। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम खामोशी ओढ़ लेती है तब किसी अपने की कमी और गहरी महसूस होती है। दिल चाहता है कि कोई पास बैठे, कुछ न कहे, बस साथ होने का एहसास दे।

चार दिल और चार राहें फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। कुछ मुलाकातें इतनी कीमती होती हैं कि उनका इंतजार भी अपने आप में एक एहसास बन जाता है। दिल हर आहट पर ठहर जाता है, हर गुजरते पल से यही कहता है कि शायद अब वो सामने आ जाए। मोहब्बत में कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका इंतजार होता है।

जहां आरा फिल्म का गाना आपने सुना, रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 43 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। इसे लिखा ऐश कंवल ने और संगीत दिया जिमी ने। जब कोई दिल में गहराई से बस जाता है तो फिर आसपास की दुनिया धीरे धीरे धुंधली लगने लगती है। हर बात, हर रास्ता, हर खामोशी उसी की याद से जुड़ जाती है। इंसान लोगों के बीच रहकर भी कहीं भीतर अकेला हो जाता है, जिसे उसकी सारी दुनिया सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट आई हो।

आसमान फिल्म का गाना आपने सुना सीएच आत्मा की आवाज में। प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। ये दुनिया भी अजीब है, कभी छोटी सी मोहब्बत को ठुकरा देती है और कभी दिखावे को सर आंखों पर बिठा लेती है। इंसान जितना लोगों को समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है। शायद इसीलिए सुकून अक्सर भीड़ में नहीं, अपने ख्यालों और चंद सच्चे रिश्तों में मिलता है।

सगाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और तलत की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 30 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। किसी का साथ इतना अजीज होता है कि उसकी मुस्कान में सुकून और उसकी मौजूदगी में पूरी दुनिया नजर आने लगती है। तब मोहब्बत सिर्फ चाहत नहीं रहती, दिल की सबसे खूबसूरत इबादत बन जाती है।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ।

सत्ती फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। सुहानी चांदनी रातें अक्सर दिल को ऐसी बेचैनी दे जाती हैं कि नींद भी आंखों के पास आकर ठहर जाती है। ठंडी हवा, खामोश गलियां और यादों में धुली कोई मीठी सी आवाज रात को और भी लंबा बना देती है। ऐसे लम्हों में इंसान सोना नहीं चाहता, बस उन एहसासों को चुपचाप जीते रहना चाहता है।

अनुरोध फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें, उनकी हंसी और उनका एहसास दिल में कहीं ठहर जाता है, और कुछ लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आते हैं, मिलते हैं, फिर धीरे धीरे यादों से उतरते चले जाते हैं। शायद फर्क रिश्तों का नहीं, एहसास की गहराई का होता है।

मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद पक्षी की आवाज में। आनंद पक्षी ने ही इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:30 और ठीक 6 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों को मेरे सुरों में बसा लो, जैसे कोई मीठी धुन धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आवाज का हर एहसास मेरी खामोशियों को भी गीत बना दे और फिर जिंदगी बस एक खूबसूरत सा साज बनकर रह जाए।

चेतना फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इन शब्दों में जैसे पूरी दुनिया की सादगी और गहराई समाई हुई है। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो पल अपने हों, जिन्हें किसी अपने के साथ महसूस किया जा सके, उन्हें खुलकर जी लेना चाहिए।

वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 44 सेकेंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉ. सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेवे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। दोस्तों, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके एहसास से जुड़े होते हैं। इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो दिल को बिना शोर किए छू जाती है, और ये गीत है एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्म राजकुमार से। ये फिल्म आई थी 1964 में, तुमने पुकारा और हम चले आए। सिर्फ एक गीत नहीं, किसी के लिए बे इंतहा चाहत का एहसास है। जब अपना कोई दिल से पुकारे तो फासले मायने नहीं रखते, बस कदम खुद ब खुद चल पड़ते हैं। ये गीत याद दिलाता है कि सच्चा प्यार इंतज़ार नहीं करता, बस पुकार सुनकर चला आता है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। उनमें से ही ये भी नगमा है, तुमने पुकारा और हम चले आए। बेहद खूबसूरत है नगमा, मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए ख़ास तौर से। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर

तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। बेहद खूबसूरत ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और कोशिश भी यही करते हैं कि ये नगमे हमेशा हमारे दिल में बसे रहें और यूं ही हम भी उसे प्यार करते रहें। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगले नगमे के साथ। और अगला नगमा बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला। कहते हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, नज़रों से शुरू होते हैं। जैसे तुम्हारी आंखों में कोई अपना सा जहां दिखता है, जहां हर खामोशी एक बात कहती है और हर मुस्कान दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आंखों में देखना ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो और वो दुनिया की सारी आवाजें बस एक एहसास में बदल गई हों। अगर मोहब्बत का कोई

इस सबसे खूबसूरत पता होता तो शायद वो तुम्हारी आंखें होती, जहां दिल हर बार खोकर भी खुद को पा लेने की कोशिश करता। बिल्कुल इस नगमे की तरह। और ये नगमा है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म प्यासा से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस बेहद खूबसूरत महफिल हमराही में। और आज के इस हसीन रात में मैं हूं आपका हमराही, आपका दोस्त, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जिसमें गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत नगमे बना करते थे और एक गीत को बनने में कई कई दिन लग जाया करते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक इतने विस्तार से नहीं हम लोगों के दरमियान पहुंचे थे कि हम आज की तरह उन गीतों को तैयार कर पाएं। मगर वो दौर था जिसने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया, सिर्फ गीतों के जरिए ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी इन गीतों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किए। और शायद इसीलिए ये नगमे हमारी जिंदगी से जुड़ गए और इन सब के बीच एक सबसे खूबसूरत एहसास जो हम लोगों के लिए है वो है प्यार, मोहब्बत। प्यार शायद वही होता है जब किसी एक इंसान के लिए इंसान खुद को बदलने लगे। तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। तुम्हारे प्यार में जाने कितने रंग उड़ लिए हमने, कभी बेवजह मुस्कुराना सीखा तो कभी तुम्हारी यादों में घंटों खो जाना। ये दिल भी कितना अजीब है ना, तुम्हारे लिए हर बार कुछ नया बन जाने को चाहता है, बस तुम्हारे करीब रहने की एक छोटी सी वजह के लिए। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है तो बस इतना ही कहना, किसी एक शख्स के लिए खुद को हर रोज नए अंदाज में पा लेना, वही मोहब्बत है।

जदे फिल्म का यह नगमा था और ये आवाज़ें थी गीता दत्त और मन्ना डे साहब की। ये फिल्म आई थी 1964 में। इस फिल्म में जो म्यूज़िक दिया था वो बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, हम सब के बहुत ही प्यारे सचिन देव बर्मन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप सभी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, और इस हमराही की महफिल में आप भी हमारे हमराही बनकर चल रहे हैं इस सफ़र पर, क्योंकि यह सफ़र इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है, क्या बस इस सफ़र पर यूं ही चलते रहना चाहते हैं हमारे हमराही बनकर, और हम भी आपके हमराही बनकर यूं ही बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ आपके कदम से कदम मिलाकर यूं ही चलते रहेंगे ऐसे ही नगमों के साथ। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म सहरा से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रामलाल ने।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी इस पसंदीदा महफिल में जो आपके दिल के बेहद करीब।

सगाई फिल्म का यह नगमा था मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में यह फिल्म आई थी 1966 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था हम सब के बहुत ही प्यारे रवि साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी में मिल जाए जो आपके दिल के इतना करीब हो जाए कि बस सिर्फ आप उसी के बारे में सोचते रहें। शायद ऐसे ही नगमे हैं इस हमराही की महफिल में और आपको ज़रूर उन पुराने दिनों की याद दिलाएगा। ये ऐसा नगमा है कि कई बार आप उस दौर में चले जाते हैं जब आपकी ज़िंदगी में भी कोई था। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में चुपचाप जगह बना लेते हैं, बिना दस्तक दिए, बिना शोर मचाए। तुमसे मिलना भी कुछ ऐसा ही था जैसे किसी अधूरी दुआ को उसका जवाब मिल गया हो। तुम्हारी हंसी में सुकून है, तुम्हारी बातों में अपनापन, और तुम्हारे साथ जैसे हर मौसम थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। कभी सोचा नहीं था कि किसी का होना इतना खास लग सकता है, लेकिन अब दिल हर धड़कन में बस एक ही बात कहता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में अगर किसी को चुनना हो तो हर बार सिर्फ तुम्हें चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी ज़रूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और ये नगमा है 1967 में आई फिल्म नाइट इन लंदन। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने, और आवाजें हैं दत्ता जी और महेंद्र कपूर साहब की।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और हमराही में आज हूं मैं आपका हमराही, आपका दोस्त, आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यूं ही हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम भी हाजिर हैं आपके लिए इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और ये महफिल इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है कि वो हमें सीधे गोल्डन एरा के उस दौर में लेकर चली जाती है, क्योंकि ये दौर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। ये दौर एक ऐसा दौर था जब फिल्में हमारे समाज का आईना हुआ करती थी और फिल्में ऐसा प्रभाव डालती थी समाज पर कि बस सब कुछ ऐसा लगता था कि हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो। फिल्में जब बनती थी तो हकीकत से काफ़ी करीब हुआ करती थी, और भले ही वो दौर बहुत पीछे छूट गया हो, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं, पुरानी फिल्मों को देखते हैं, गोल्डन एरा के उन फिल्मों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दौर अभी बहुत पीछे नहीं रहा, बल्कि हमारे इर्द गिर्द आज भी अगर आप गाँव में जाएं, देहाती क्षेत्रों में जाएं, तो आज भी लगता है कि ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। वो बैलों की टोलियाँ

और वो बैलगाड़ी, वो तांगे शायद आज भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे जब आप गांवों शहरों से दूर गांवों की तरफ रुख करेंगे। हालांकि सब कुछ बदलता जा रहा है धीरे धीरे, मगर जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने जो फिल्मों में देखा है अब भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी ही एक फिल्म थी जो आई थी 1957 में, और वो फिल्म थी नया दौर। एक दौर एक गांव को शहर बनने की तरफ किस तरीके से लेकर के जाता है और किस तरीके से वहां पर चीज़ें बदलती जाती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, शमशाद बेगम और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक कव्वाली है तो भी गलत ना होगा। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टो

0: देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की पहली भारत यात्रा शुरू करेंगे। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वे कोलकाता में मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो के विक्टोरिया मेमोरियल जाने की भी संभावना है। रविवार को श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को वे आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और फिर मंगलवार सुबह नई दिल्ली लौटेंगे, जहां वे भारत द्वारा आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसी बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकेंड, और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का। और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज़। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है जब किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं सुकून बन जाए और प्यार हो, तो जिंदगी मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह दे देती है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां प्यार और अपनापन कदम कदम पर साथ हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो जीने का अंदाज ही बदल देते हैं, हर दिन एक नई कहानी लिखती है और प्यार उसे खूबसूरत बना देता है। जब दिल में मोहब्बत और आंखों में उम्मीद हो तो जिंदगी और मौसम में हसीन लगती है। सही इंसान का साथ मिल जाए तो फिर साधारण आम से जिंदगी भी किसी खूबसूरत गीत जैसी लगती है, जैसे फिल्म उजाला का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं, अरुणिमा के सफर का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ।

किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में ये नगमा था फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से। ये फिल्म आई थी 1981 में और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। अरुणिमा की इस महफिल में हम बात जिंदगी से जुड़ी हुई जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किलात आए भले कितनी परेशानियां आए लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी के साथ अगर आप प्यार से बढ़ाते हैं तो बस जिंदगी खूबसूरत बन ही जाती है। कहते हैं सही इंसान का साथ मिल जाए तो साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई मुस्कुराने की वजह बन जाए वही सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, वही सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ ज़िंदगी हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आती है और इसी उम्मीद के साथ हम भी ज़िंदगी को बड़े ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही चुलबुला सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म शागिर्द से। ये फिल्म आई थी 1967 में जिसमें बेहद खूबसूरत कलाकारों ने काम किया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके नगमे भी बनाए गए थे। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जॉय मुखर्जी, आईएस जौहर, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, मदनपुरी, असित सेन, एके हंगल साहब, शिवराज और शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और जोगिंदर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फ़िरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में। इसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33:10। अरुणिमा की बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें हम जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की, फिल्मों के नगमों की और उन नगमों में बसी जिंदगी की। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन जब दिलों का रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद फिर से मिल जाते हैं। ये दुनिया इस नगमे के मुताबिक बहुत ही छोटी सी है और अनजाने रास्ते हैं और इस उम्मीद में हम जीते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमारी मुलाकात हो जाए। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं पर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं और कुछ लोग बस एक बार मिलकर भी दिल में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। जिंदगी का सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ में खूबसूरत यादें हों तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि इस छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे रास्ते फिर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वो बस वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। जैसे हमारा और आपका रिश्ता बेहद गहरा, बेहद प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, अपने ईमेल्स के ज़रिए। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और जल्दी से आप जहाँ भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काम, आप अपने ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तब तक मैं आपको वही नगमा सुनवाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। रंगोली फिल्म का यह नगमा किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

जी हाँ, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। बहुत ही छोटा सा ये नगमा और बहुत ही खूबसूरत बातें। कहते हैं कि बातें कम अल्फाज में भी बहुत कुछ कह जाती हैं, छोटी सी लाइनों में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। ऐसा ही ये नगमा था कि छोटी सी ये दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, फिर पूछेंगे हालचाल क्या है, कैसे हैं और अब कैसे रहें। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरीके से कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल को सुकून देते हैं। जैसे किसी अपने का हाथ थाम कर ये यकीन होना कि अब हर मुश्किल में कोई तो हमारे साथ खड़ा है। तुम्हारा साथ किसी खूबसूरत दुआ जैसा है जो हर दिन थोड़ा और हसीन बना देता है। अब खुशियाँ बड़ी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती है, और ऐसा तब होता है जो जब आपका अपना कोई आपके दिल के बेहद करीब होता है। ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास यही दिया कि जब कोई दिल से अपना बन जाए तो हर मौसम, हर रास्ता, हर दिन, हर वक्त

बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, बहुत ही प्यारा लगने लगता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म हनीमून से। यह फिल्म आई थी 1973 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है, मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, जिसको बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने और गीत लिखे हैं योगेश ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। और अरुणिमा में बातें ज़िंदगी की, और ज़िंदगी में तमाम मुश्किलात के बावजूद किस तरीके से इसको आगे बढ़ाई जाए उसकी, ऐसी ही बातें जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है जब हमारा कोई अपना हमारे साथ होता है। लेकिन कहते हैं ज़िंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं होती, ज़िंदगी वो होती है जहाँ किसी की मुस्कान में अपनी खुशी मिलने लगे, जब कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हर मुश्किल हल्की लगने लगे और हर खुशी दोगुनी। तो समझ लेना चाहिए कि ज़िंदगी ने आपको सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया है। प्यार सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ हर दिन को बेहतर बनाने का एहसास है, जहां उम्मीद हो, सम्मान हो और एक दूसरे के लिए प्यार हो और साथ निभाने का वो जज्बा हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर आप ना मिलते तो शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब लगता है सच्चा जीना वही है जहाँ दिल में प्यार हो और साथ में कोई अपना जो हर दिन को जीने की नई वजह दे जाए। बिल्कुल इस अगले नगमे की तरह जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, 1971 में आई फिल्म अधिकार। ये बेहद खूबसूरत फिल्म जिसके गीतों को लिखा है रमेश पंत ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आरडी बर्मन साहब ने। उसी फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके लिए।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हों आप पे निसार। हाँ बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही

0: तो जोड़ जाएंगे, हाय हाय बनेंगे किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के होके जाएंगे।
1: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा था फिल्म लाट साहब से। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित

0: ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों

0: सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: इस बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे कोलकाता में मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो का विक्टोरिया मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में पंप एंड डंप रैकेट चलाने के आरोप में कई अपंजीकृत फाइन इन्फ्लुएंसर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में जारी बाजार नियामक ने कहा है कि इन संचालकों ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों को खरीदा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुझाव साझा करके कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और बाद में मुनाफे पर शेयर बेच दिए। इससे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने कहा कि आरोपियों ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में चल रहे इबोला के मौजूदा संक्रमण से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अत्यंत उच्च कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 82 मामले और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन संक्रमण के इससे कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Dipendra, this is Anand Kumar for Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization adoption

बराबरा नमस्कार और खुलूस आदाब। और दोस्तों, आज हम एक नई सुबह में कदम बढ़ा चुके हैं, एक नए दिन की शुरुआत करने ही वाले हैं, क्योंकि आज हम एक नए दिन में कदम, जैसे मैंने पहले बताया, रख चुके हैं। तो हर काम की शुरुआत हम खुदा के नाम से, उस ईश्वर के नाम से करते हैं। हम जो भी नया काम करते हैं, नए दिन की शुरुआत हम करते हैं, तो उसी ईश्वर के नाम से करते हैं, उसी भगवान के नाम से करते हैं, उसी खुदा के नाम से करते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है। कहते हैं कि खुदा की रहमत अक्सर खामोशी में मिलती है, बस दिल में यकीन होना चाहिए। और जब इंसान थक जाता है, तब उस ईश्वर को याद करता है और वही ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है। ईश्वर देर करता है, मगर बेहतर देने के लिए करता है। हर दुआ तुरंत पूरी नहीं होती, कुछ दुआओं का खुदा सही वक्त पर जवाब देता है, सही वक्त मुकर्रर कर रखा है। इसीलिए ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और तभी हम कोई नया काम करते हैं। इसीलिए हम भी आज के इस नए दिन की शुरुआत उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम से करेंगे। फिल्म पवित्र पापी के इस बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 6 सेकंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा

इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:27 और 15 सेकेंड महफिल आपके अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, जिसमें जिंदगी की बातें और ज़िंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं उसकी बातें, मुस्कुराहट के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे आसपास भी वही मुस्कुराहट बिखरी हुई होती है। कहते हैं कि माना सफ़र थोड़ा मुश्किल है ज़िंदगी का, लेकिन रास्तों में थकान भी बहुत होगी। कुछ मोड़ ऐसे भी आएंगे जहां लगेगा कि अब आगे बढ़ना आसान नहीं, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बाद भी हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है बेहद खूबसूरती के साथ, बहुत ही प्यार से। लेकिन हर मुश्किल रास्ता किसी खूबसूरत मंजिल की तैयारी भी होता है। ज़िंदगी कभी सिर्फ आसानियों से नहीं बनती, ये तो उन हौसलों से बनती है जो गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं। और याद ज़रूर रखें, धीरे चलना हारना नहीं होता, और थोड़ा रुक जाना मंजिल से दूर हो जाना नहीं होता। बस खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जो आज मुश्किल लग रहा है कल वही सबसे बड़ी आपकी ताकत बन जाएगी। माना सफर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, और जब इरादे सच्चे हो तो रास्ते भी एक दिन मुस्कुराने लगते हैं और आपको राह दिखाने लगते हैं इस नगमे की तरह।